जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो गणपति महाराज उसकी हर विनती सुनते हैं। आइए इसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनते हैं गणपति महाराज जी का यह भजन।

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तांपो केहा काढ़ा जियो। इस श्लोक दे विच ये फरमाया गया है कि ओ परमात्मा साडे लई पिता, माता, रिश्तेदार ते भरा दे समान है। ते जद ओ वाहिगुरु, ओ सच्चा पातशाह साडा राखा है, तां सानू होर किसे डर या होर किसी की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जदों असी सब कुछ उस परमात्मा ते छड्या होवे तां परमात्मा हमेशा सानू बचा के रखता है।

जिस घर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है, वहाँ खुशियाँ, शांति और प्रेम अपने आप आ जाता है।

जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वाकी जिसने उस परमात्मा दे नाल सच्चा प्यार कीता है उसने ही उस परमात्मा नू हासिल कीता है। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

जब मन में श्री कृष्ण का नाम बस जाए तो हर दुख छोटा लगने लगता है। जिसका सहारा गिरधर गोपाल हो उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।

भोले हैं भंडारी हैं, सबके संकट हरने वाले हैं। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

FM बैंड 102.7 MHz, FM बैंड 103.6 MHz ते तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। प्रोग्राम वंदना इस वक्त समाप्ति दे वाला है, ते आओ सुनदे हां ये आखिरी भजन।

नमस्कार, सवेर दे सत वज चुके ने। एफएम रेनबो ते वेला हो गया है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस दे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो नाल इंडिया इनवेट्स सम्मेलन दा उद्घाटन करनगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सरहदी जिलों में आबादी संबंधी तब्दीलियां दा अध्ययन करन दे निर्देश दिते ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच भारत ने विश्व पद्धर ते नवी पछाण बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल तीरज सेठ देश के नवे फौज मुखी होणगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि निरंतर रहण योग खेतीबाड़ी नवीनता अते खोज विकसित भारत की नींह है।

तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को करार नहीं आता। यूं तो लाखों हंसी चेहरे हैं इस दुनिया में, यूं तो लाखों हंसी चेहरे हैं इस दुनिया में, पर तेरे जैसा नजर दिलदार नहीं आता। तुझे देखे बिना इस दिल को चैन नहीं आता, तुझे देखे बिना इस दिल को करार नहीं आता। मैं क्या जी, जो रूह तो रूह का रिश्ता बनया हो फिर देखे बिना मिले बिना किवें करार आ सकता है, किवें चैन आ सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। FM बैंड 102.7 MHz, FM बैंड 103.6 MHz नाल दी नाल न्यू जोन AIR ऐप वाले दोस्तों एक बार फिर तो प्यार भरी सत श्री अकाल। और स्टूडियो घड़ी के समा 7:03 और 58 सैकेंड हो रहे हैं जनाब। ते प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके थोड़ा दोस्त आरजे ललित सोनी एक बार फिर तो हाजिर हो गया जनाब। संडे वाली खूबसूरत मॉर्निंग दा आगाज हो चुका है, एतवार दी सजरी सवेर थानू जगा रही है, थानू बुला रही है। तो अज दा ए संडे वाला दिन बहुत खुशियां चावां दे नाल बतीत करना है तुसी, ते अपने पूरे हफ्ते दे पेंडिंग काम जड़े ने ओ करने ने। अपना और अपने चोन वालियां दे लई समा कढ़ना है और गल्लां बातां करनी है, क्योंकि ये संडे वाला दिन बहुत सारा उम्मीदा, बड़िया सारिया खुशियां, बड़े सारे चा, बड़े सारे मेल मिलाप दा सबब बनाउंदा है। सो अज दे इस खूबसूरत दिन नूं होर भी खूबसूरत और प्यारा बनाउण दे लई प्यारी जी मुस्कान दे नाल तुसी अज दे दिन की शुरुआत कर सकते हो। सो मेरा और थोड़ा साथ बने रहेगा ठीक 10 बजे तक, ठीक 8:30 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दी गल्लां बातां थोड़े नाल करांगे। इनफॉरमेशन, एंटरटेनमेंट और नाल दी नाल गीत संगीत दा तड़का भी लगता रहेगा। 8:30 बजे होणगे पंजाबी दे विच खबरां और 8:40 होएगा म्यूजिकली बैक टू बैक सफर अड्डी टप्पा, और 9 बजे आगाज होएगा थोड़ा मेरा सब दे फेवरेट वाला प्रोग्राम

अपना पंजाबी दा जिथे तुसी दिल खोड़ के दिल दियां गल्लां करदे हो। नंबर है 9855 10 10 27। चंगा लिखदे हो, चंगा गाउंदे हो, या फिर किसी दा लिखिया गीत कविता तुहानू पसंद है, या फिर तुहाडे अंदर कोई खास टैलेंट है, या तुहाडे आस पड़ोस दे विच गुआंढ दे विच कोई इहो जिहा टैलेंट है जिहड़ा तुहानू लगदा है कि उस टैलेंट नू बाकी स्रोतियां तक बाकी दोस्तां तक पहुँचाउणा चाहीदा, ते तुसी 9 बजे प्रोग्राम दे विच जुड़ सकदे हो, अपने मैसेजेस दे नाल अपने आवाज़ दे नाल प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकदे हो। 9855 10 10 27 प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। सो फिलहाल अज की खूबसूरत सजरी सवेर का आगाज करते हैं कुमार सानू की खूबसूरत आवाज़ में गाए इस गीत दे नाल, और इस गीत तो बाद बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी थोड़े नाल सांझी की जाएगी। सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

संडे वाली खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज हो चुका है। सजरी सवेर थोड़े लिए बहुत सारिया उम्मीदा बहुत सारिया उमंगा लैके आई है। सो अज के दिन तुसी प्लैनिंग करनी है कितने कितने तुसी जाना है और अगले हफ्ते की थोड़ी की प्लैनिंग है तुसी वो भी करनी है और या फिर कितने घूमन जाने की प्लैनिंग कर रहे हो या कितने जाने की प्लैनिंग कर रहे हो वो फिर संडे वाला दिन बेहद खास होंगे। सो जेकर तुसी इस वक्त कितने जाने की तैयारी कर रहे हो तो जनाब थानू दस दिए कि जेकर तुसी इस वक्त जा रहे हो कितने ट्रैफिक नियमों की पालना जरूर करनी है और सीट बैल्ट लगा के गड्डी जिहड़ी है चलानी है और दुपहिया वाहन से जा रहे हो तो हैलमेट जरूर वेयर करना है। इस तरह करके तुसी सहजे सहजे उस जगह पर पहुँच सकते हो जिस जगह पर तुसी जाना चाहते हो। मैं जी हुण गल करते हैं अज के थॉट की तो अज का विचार जड़ा आ वो की कहता है। सो अज का विचार कहता है कि छोटी सी मुस्कान बड़ा कमाल करती है, उदास चेहरों को भी खुशहाल करती है, खुशियाँ बांटने का हुनर सीख लीजिए, यही जीवन को बेमिसाल करती हैं। सो बाकी छोटी जी मुस्कान बाकी बहुत कमाल कर दिया है। जो तुसी हसदे हो जो तुसी खिड़खिड़ा के हसदे हो तो देखने वाले हर एक इंसान के चेहरे पर मल्लो मल्ली जिहड़ी मुस्कान आ जाती है तो पूरा माहौल जिहड़ा है खुशनुमा हो जाता है। वो कहिंदे कि मुस्कान स्माइल खुशी एक अजिहा इत्र है जिहड़ा कि दूजियां ते छिड़कण दे नाल तुहाडी अपनी जिंदगी खुद महकण लग जाती है। सो हालात किवें दे मर्जी होण हमेशा बुल्लां दे उपर मुस्कान रहनी चाहीदी है ते कोशिश इहो होनी चाहीदी है कि साडी वजह दे नाल सब दे बुल्लां दे उपर मुस्कान रहे और कोशिश यह करिए कि साडी वजह करके किसी की अखां दे विच्चों हंझू ना वगे। छोटी छोटिया चीज़ों के विच्चों खुशी जेकर असी तलाशांगे तो यकीनन वो जिहड़ी खुशी का एहसास होएगा वो सानू एक वक्रा सुरूर दे के जाएगा और साडी जिंदगी दे विच पॉजिटिविटी जिहड़ी आ वह बनी रहेगी। सो आओ सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल ते निखिल दी खूबसूरत आवाज़ दे विच।

फिल्म अभिनेता कलाकार शेखर सुमन का जन्म 1960 के विच आज ही दे दिन होया। और इस दिन नाल ही हिंदी और बंगला अभिनेत्री किरण खेर 1995 उन्होंने जन्म होया आज ही दिन। सो आज ही दिन 1922 प्रसिद्ध हिंदी फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ साहब का जन्म होया। और भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हीराबाई ब्रोदकर का जन्म 1905 अज ही दिन होया। भारतीय राष्ट्रवादी विज्ञानिक ते आविष्कारक सतीश चंद दास गुप्ता 1880 इन्हों का अज ही दिन जन्म होया। और इस तो इलावा अज ही दिन 1920 प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इतिहासकार मैक्स वेबर का निधन होया। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानिक श्रीनिवास कृष्णन का निधन आज ही दिन होया। और असद अली खां रुद्र वीणा वादक इन्हों का निधन आज ही दिन होया। और भारतीय फिल्मा अभिनेता थिएटर और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का निधन अज ही दिन 2020 होया। सो इस तो इलावा अज असी सैलीब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस। सो इस दिन की की महानता है, ये दिन मनाने का की मुख उद्देश है, इस दे बारे अज एक्सपर्ट दे नाल गल्लबात होणगियां। नाल दी नाल थोड़े विचार भी जाणांगे भी तुसी अपनी जिंदगी दे विच किन्नी वारी जड़ाया खून दान कीता है या किन्ने लोग थोड़ी वजह करके या थोड़े करके खून दान दे लई मन्ने ने या खून दान करन लग पए ने थोड़े वल वेख के। सो ये गल्लबात होणगियां प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच। सो फिलहाल चलते हैं हरभजन मान की खूबसूरत आवाज़ दे विच इस गीत वाल। और गीत तो बाद गल्लां बातां दा गीत संगीत दा तड़का इनफॉर्मेशन दा तड़का इसे तरह ही लगता रहेगा।

कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं।

हजार रुपए सट्टेबाजी के उपर जड़ा है, वह खर्च कर रहे हैं। सो जो कि एक बहुत ही माड़ी आदत है। सो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर जिहड़ा तुहाडे कोल जमा पूंजी है तुसीं उस तो भी हाथ धो बैंदे हो। सो इहदे बारे थोड़ा जिहा सोचना चाहिए है। सो आर बी आई दे कोल भी सब तो ज़्यादा शिकायतां जिहड़ियां इस लोन दे संबंधित जिहड़ियां पहुँच रही ने। और यूपी दे विच सब तो ज़्यादा 42,000 जिहड़े हैं शिकायतां इस संबंध दे विच जिहड़ियां पहुँचियां होईयां ने। सो इस चीज़ के उपर थोड़ा जिहा गौर करना पैना है तां जो असी अपनी युवा पीढ़ी नूं नौजवान वर्ग नूं जिहड़ा सही दिशा और दशा दे वल पहुँचा सकीए। सो अपनी मेहनत दे नाल कीती हुई कमाई नूं सही जगह ते लगाउणा, सही जगह ते यूज़ करना जिहड़ा है वह साडा सब दा फर्ज बनता है। सो जेकर कोई थोड़े लागे या थोड़े आस पड़ोस दे विच कोई अजिहा इंसान है सो उहनूं इहनां गलत राहां ते चलण तों सानूं रोकना चाहीदा है। क्योंकि बाद दे विच जेकर असी अक्सर देखते हैं कि बाद दे विच यही डिप्रैशन यही टेंशन का कारण चीज़ा बनदिया ने तो उस तो बाद जड़ा है बहुत सारिया जाना जड़िया ने इस करके ही जड़िया वो जान चली जाती है। सो मनुखी जान बहुत कीमती है, इसनों जड़ा है वो बचाना चाहिए। सो अज असी मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो ये बारे भी थोड़े नाल गलबात करांगे एक्सपर्ट दे नाल इस गीत तो बाद। तो तुसी सुनते रहना है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर 102.7 FM रेनबो 103.6 मेगाहर्ट्ज़ नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते प्रोग्राम दा आनंद माण रहे हो। आओ सुनते हैं गीत ते इस गीत तो बाद फिर तो गल्लां बातां दा सिलसिला लैके थोड़े नाल हाजिर होवांगा।

0: एफएम रेनबो से चल रहा है एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन द समंदर ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर, अपने दोस्त ललित दिनाल। सो एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन दे इस वगदे हुए समुंदर तो बाद हुण गलबात करन लगे आ उस खास चीज दी जिहड़ी कि साडे सब दे लई बहुत जरूरी है। दोस्तों कहिंदे ने कि दुनिया विच सब तो कीमती तोहफा ओ हुंदा है जो किसी दी जिंदगी बचा सकीए, अते खूनदान एक अजिहा तोहफा है जो किसी अनजान इंसान नूं नवी जिंदगी दे सकदा है। और कई बार असी हस्पताल विच किसी मरीज नूं, किसी हादसे दा शिकार होए व्यक्ति नूं, या किसी मां नूं, या किसी थैलीसीमिया दे नाल जूझ रहे बच्चे नूं जदों खून दी लोड़ पैंदी है तां अजिहे वेले एक रक्तदाता यानी कि खूनदान करन वाला व्यक्ति किसी फरिश्ते तों घट नहीं हुंदा। सो इसे उद्देश नूं मुख रखदे हुए हर साल 14 जून नूं पूरी दुनिया दे विच विश्व खूनदान दिवस मनाया जांदा है। और ये दिन उन्हां महान लोकां नूं समर्पित है जो अपने खून दियां कुछ बूंदा दे के किसी दी जिंदगी विच उम्मीद दी रोशनी भरदे ने। एक यूनिट खून किसी हादसे दे शिकार थैलसीमिया पीड़ित बच्चे, कैंसर मरीज या किसी होर लोड़वंद व्यक्ति की जड़ा वह जान बचा सकता है। सो रक्तदान की खूनदान की सब तो वड्डी खूबसूरती यह है कि इस नाल ना सिर्फ किसी की जान बचती है सगों समाज विच प्यार सांझ ते इंसानियत का संदेश भी फैलता है। सो विश्व खून दिवस मनाने का की उद्देश है, खूनदान करना क्यों जरूरी है, किहड़े लोग खूनदान कर सकते हैं, थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान करना कितना ज़्यादा जरूरी है उन्होंने, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए साढ़े नाल अज जुड़ चुके हैं डॉक्टर बी आर अंबेदकर ब्लड डोनर्स एसोसीएशन के मैंबर जिहड़े ने जतिन मट्टू जी। सो उन्हों का स्वागत करते हैं। और सब तो पहले स्रोतियों को दस दिए कि यह संस्था जी ब्लड डोनेशन कैंप के नाल समाज भलाई के बहुत सारे कामों के अपना योगदान दे रही है और बहुत सारे लोगों तक लोड़वंद लोगों तक बहुत सारिया सुविधावान पहुँचा रही है। आओ सब तो पहलों सर का स्वागत करते हैं। जी जतिन मट्टू जी, सब तो पहला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच थोड़ा बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू ललित जी, सत श्री अकाल
0: जी। जी सर, सब तो पहलों साडे स्रोतियां नूं अज दे दिन दी खास महत्ता तो जाणू कराओ कि अज असी विश्व खूनदान दिवस मना रहे हैं, विश्व खूनदान दिवस, ते इस दिवस नूं मनाउण दा की मुख उद्देश है?
1: खोज समर्पित है
0: जी। सर खूनदान नूं महादान क्यों कहा जाता है अते किहड़े लोक जिहड़े ने खूनदान कर सकते ने?
1: खूनदान नूं महादान इस करके कहा जाता है कि देखो जदों किसी अनजान व्यक्ति लई किसी नूं टाइम कट के अपना समा जिहड़ा है उह दे के किसी दी जिंदगी नूं बचाउणा, क्योंकि देखो सब तो जिहड़े इंपोर्टेंट है बंदे दे जीवन दे जिहड़े सुवास ही ने
0: जी,
1: ते सुवास नूं इक देना उह इक फरिश्ते दे काम नालों घट नहीं है, इक रब दे काम नालों घट नहीं, इसलिए खून नूं महादान किया जाता है। और 18 साल तो लैके 65 साल तक की कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति खूनदान कर सकते
0: जी। जी सर, लोगों के अक्सर ये धारणा देखने को मिलती है कि खूनदान करने के नाल कमजोरी आ जाती है, कि ये सच है?
1: नहीं सर, ऐसी कोई गल नहीं है जी। मैं खुद

साल के नरेश कुमार जी ने वह भी जड़ा आ 158 बार खून दान कर चुके हैं। सो ये लोग ने जिन्होंने जड़ा आ कोशिश की है कि अपने छोटे जे एफर्ट के नाल किसी के चेहरे पर मुस्कान लियाई जाए, किसी को हसाया जाए और किसी की जिंदगी दे विच जड़ा नवे रंग भरे जाए। सो योजे लोगों की सोच न योजे लोगों की जोश नू जज्बे नू जड़ा है वह सलाम करना जड़ा है वह बनता है, क्योंकि यहोजे लोग जड़े ने समाज के जड़ा एक चानन मुराने के वांग जड़ा है वह काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हां दे एफर्ट दे नाल किसी के चेहरे के उपर मुस्कान रहे। तो जनाब तुसी भी यहोजा काम कर सकते हो, तुसी भी समाज के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हो। और फिलहाल इस वक्त स्टूडियो से 8:56 से 55 सैकेंड हो रहे हैं स्टूडियो घड़ी से और प्रोग्राम नू वाइंड अप करन दा इत्थे समां आ गया है और तुसी भी प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकते हो 9 बजे अपनी टैक्सट मैसेज वॉइस मैसेज के जरिए और दस सकते हो कि प्रोग्राम थानू किवें दा लगा, अज दी गलबात थानू किवें दी लगी। और जांदे जांदे इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच मैं यही कह के जावांगा कि कोशिश करिए कि समाज दे विच कुछ चंगा हो करिए, चंगा सोचिए, चंगा करिए और समाज

स्टूडियो खड़ी थे और प्रोग्राम नू वाइंड अप करन दा इत्थे समां आ गया होया और तुसी भी प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकते हो 9 बजे अपने टैक्सट मैसेज वॉइस मैसेज के जरिए और दस सकते हो कि प्रोग्राम थानू किवें दा लगा, अज दी गलबात थानू किवें दी लगी। और जांदे जांदे इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच मैं यही कह के जावांगा कि कोशिश करिए कि समाज दे विच कुछ चंगा हो करिए, चंगा सोचिए, चंगा करिए और समाज नू साफ सुथरा हरिया भरिया रखने दे विच मदद करिए। सो जिवें कि गर्मी दा मौसम आ चुका होया और गर्मी जिहड़ी आ बहुत मात्रा दे विच पै रही है, सो बेजुबान जानवरां दे लई, पंछियां लई, पक्षियां दे लई जिहड़ा कुछ असी उन्हां लई दाणा पाणी दा प्रबंध करिए, सो तां जो वह भी खुली हवा दे विच साह लै सकन ते वह भी इस कुदरत दे रंगा दा साडे वांग आनंद माण सकन। ते आओ सुणदे हां इस प्रोग्राम दा ये आखिरी गीत।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

नमस्कार सवेर दे नौवा चुकी ने एफएम रेनबो ते वेला हो गया है एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नीस विखे फ्रांस दे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल खेतरी अते आलमी मुद्दियां ते दुबली गलबात अते इंडिया इनवेट्स दा उद्घाटन करनगे। इसरो मुखी वी नारायण ने कहा है कि भारतीय पुलाड़ खोज संगठन चंद्रमा ते 200 दिनां लई काम करन विच समर्थ लैंडर विकसित कर रहा है। अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान नाल जंग खत्म करन लई अज एक समझौते ते दस्तखत किए जाण दी उम्मीद। इस तो बाद होरमुज़ पनजोड़ सारयां लई खोल दिता जाएगा। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि पंजाब विच्चों नशियां दे मुकम्मल खात्मे लई लोकां दा योगदान अते सरकार ते समाज दरमियान तालमेल बेहद जरूरी है। लैफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश दे नवें फौज मुखी होणगे, ओह 30 जून नूं अपना अहुदा संभालणगे। कल गुरदासपुर दीआं 3 म्यूनसिपल कौंसल दीनानगर कादियां अते गुरदासपुर अते हुशियारपुर दे शाम 84 विच होईआं चोणां अमन नाल मुकम्मल। उन्होंने नतीजे

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लग रहा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगता है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी इह हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा FM Rainbow New Tune।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवार

0: ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਡੋਟ ਜੀਓਵੀ ਡੋਟ ਆਈਐਨ। ਸੂਰਿਆ ਘਰ।
1: अपनी कवितावां दे ज़रिए प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगा रहे हैं। जनाब तुसीं भी प्रोग्राम च शिरकत कर सकते हो। समा इस वक्त 9:38 हो रहे हैं। तो तुसी भी प्रोग्राम च शिरकत कर सकते हो अपनियां लिखियां लिखतां दे नाल। और एक खूबसूरत जी कविता मेरे तक पहुंची है और बहुत सोहणे लफ्ज़ां दे नाल परोई हुई कविता है, ये सानू भेजी हुई है। लिख रहे ने, सत श्री अकाल जी, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं समर्पित मेरियां सतनां। अज दे अखबार दे विच कहिंदे ये छपियां ने, मनजीत सिंह बद्दन पिंड बद्दोवाल लुधियाणा तों। सो इन्हां दा टाइटल है कविता दा, तत्ता तवी छछा छवील। सो आओ इस कविता नूं पढ़दे हां। लिखिया है, तत्ता तपिया महीना जेठ दा, तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें ऐड़ा अग वराई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें तद्दा धरत तपाई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें बब्बा बिरख सुकाई जावे। तत्ता तपिया महीना जेठ दा, किवें जज्जा जनोर सताई जावे। तत्ता तिकड़ी चंदू प्रिथिए जहांगे दी, फतवा बनाई जावे। तत्ता तको इस महीने तसियां दी, अत कराई जावे। तत्ता तत्ती तवी ते गुरु अर्जन देव जी, जज्जा जप दे बाणी। तत्ता तड़फण लोकी, पर गुरता ठठा ठंड वरताई जावे। तत्ता तकन लई गुरां दा मुख, लल्ला लाट उच्ची हो जावे। तत्ता तत्ती तत्ती रेत च चरण परसन नू हो हेठा हो आवे। तत्ता तस्वी फड़के सस्सा साई मियां मीर जी नेड़े नू होए। तत्ता तक्या मंजर अखां विचो, हाहा हंजू ते हंजू चो जावे। तत्ता तमाशा तकण नहीं आया हां मैं, साई फरमावे। तत्ता तुसी हुक्म करो, तत्ता तख्त लाहौर दा पलट जावे। तत्ता तैश दा दद्दा द्वेश ते, डड्डा डर तों दद्दा दूर किते परे परे। तत्ता तेरा पाणा मीठा लागे, सस्सा सच्चा बोल उड़दा आवे। तत्ता त्रिलोक दे मालक ओ, पंचम पातशाह बब्बा बाणी वाले। तत्ता त्रिदोख दी पीड़ा दर्द नू, गग्गा गुरु जी मिटावन वाले। तत्ता त्रिण पर वी ना डोल सके, तत्ता तसीए पातशाह जी नू। तत्ता तृप्त ने ओ पुंज, तत्ता तृप्त ने ओ पुंज, सस्सा सदा सदा अपंग शांति वाले। तत्ता तशबी ऐसी की दुनिया विच किते नज़र ना आवे। तत्ता त्यो कृपा नाल मालका, बंदा सच दा मार्ग पावे। तत्ता तख्त हजारा जगत विच, रारा रुलदे रुलदे रुल गए। तत्ता तत् खालसा अज भी, सस्सा संगत नू छबील छकावे, सस्सा संगत नू छबील छकावे। सो बहुत ही खूबसूरत कविता जनाब। इस कविता का वाकई कोई जवाब नहीं। बहुत ही सोहने शब्दों के नाल, बड़े ही प्यार दे नाल और बड़े ही सुचजे ढंग दे नाल तुसीं ये कविता के जरिए इन्हां शब्दों नू परो के भेजा है कि वाकई मज़ा आ गया इस कविता नू पढ़ के। और तुसी इस तरह ही लिखते रहो, परमात्मा थोड़ी कलम नू होर भी ताकत बख्शे, होर भी तुसी बेहतरीन कवितावां सत्रां इस तरह ही साढ़े तक पहुँचाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब थोड़ा। सो थोड़े अंदर भी जनाब यहो जी कोई टैलेंट है, यहो जी कोई थोड़े अंदर कोई लेखक छुपया बैठा है, तो उस लेखक नू जरा थोड़ा जिहा जगा दिओ ते साढ़े प्रोग्राम दे विच उहनू भेजो, ताजो असी भी थोड़े उस टैलेंट नू, थोड़े उस लेखनी नू असी अपने बाकी स्रोतियां दे नाल सांझा कर सकीए। सो फिलहाल एक वॉइस मैसेज पहुंचा, आओ सुनदे हां।
2: मेरी बेटी का नाम है जी जस प्रभदीप कौर, छोटी का नाम जी जसनीत कौर, मेरे बेटे का नाम जी साहबजोत सिंह भट्टी। मैं सारे कहना चाहना जी, सारे खून दान करना चाहिए जी, जिसने जरूरत खून जरूर दिता जाए जी। मैं आप भी चार बार

0: खून दान करना पै जावे ते कदे भी अपने कदमां नूं पिछे ना करो। जे किसे नूं लोड़ ना भी होवे, जे किते खून दान कैंप लगा होवे उत्थे खून जरूर डोनेट करो, क्योंकि आप जी दा दित्ता खून किसे ना किसे दी जिंदगी जरूर बचाएगा। खून दान करन नाल साडे अंदर दी ताकत नहीं घटदी, सगों तंदुरुस्ती आउंदी है। मैं ते हमेशा ही बेनतियां करदा रहिंदा हां कि सड़कां दा रंग काला ही रहन दिओ, इन्हां सड़कां नूं अपने जां किसे होर दे खून नाल लाल ना करो। किसे दी जान लैणी बड़ी सौखी है, पर किसे दी जान बचाणी बड़ी औखी हुंदी है। ते एहो जे काम करन वाले नूं, खून दान करन वाले नूं रब भी वधिया फल दिंदा है, वधिया ओहदा मिलदा है, समाज विच इज्जत मिलदी है। रब राखा, रब राखा, रब राखा
1: जी। उदय चंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल तुसीं प्रोग्राम दे विच हाजिरी लगाउंदे हो। प्रोग्रामां दा सार दसदे होए तुसीं अज दा मैसेज भी सानू दे के गए हो कि किवें खून दान करना चाहिए, और खून दान करना जिहड़ा महादान गिणिया गया। सो बाकी थोड़ी गल मैनूं बहुत वधिया लगी कि सड़कां दा रंग जिहड़ा उह काला ही चंगा लगदा है, तो इहनूं खून दे नाल जिहड़ा लाल होण तों रोकिया जा सकदा है। सो बाकी जेकर दोस्तों तुसीं भी इस वक्त ड्राइव कर रहे हो तो जनाब गड्डी दी सीट बैल्ट लगा के जरूर रखनी है, और ट्रैफिक नियमों की पालना जरूर करनी है। दुपहिया वाहन से जा रहे हो तो हैलमेट पा के घर चो निकलना, और ट्रैफिक नियमों की पालना करनी है। स्पीड गड्डी की जिहड़ी है कंट्रोल दे विच रखनी है, घट रखनी है, तां जो तुसीं सहजे सहजे उस थां ते उस जगह पर पहुँचो जिथे तुसीं जाना चाहते हो। एक होर मैसेज साढ़े तक पहुँचा है मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, तो इन्हों की पूरी धीमान फैमिली मैसेज कर रही है सानू। कहिंदे कि कुदरत जिहड़ी बड़ी बेअंत है, कुदरत बड़ी बेअंत है, कुदरत सानू बहुत कुछ चंगीयां नियामतां बख्शदी है, बड़ियां चीज़ां दे नाल सानू नवाजदी है। कुदरत सानू भोजन फल दवाइयां दिंदी है, और कुदरत तो जिहड़ी सब तो वड्डी साडी जिहड़ी वो टीचर है। सो इस करके कुदरत की सानू कदर करनी चाहिए है, कुदरत की सांभ संभाल करनी चाहिए है, और कुदरत दे प्रेमी होके, कुदरत दे सच्चे आशिक होके जिहड़ा आ जिंदगी दा आनंद मानना चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो फिलहाल चलते हैं एक खूबसूरत गीत वाल, गीत का भी वेला हो गया है, तो गीत तो बाद थोड़े प्यार भरे मैसेजेस प्रोग्राम च शामिल करांगे, और थोड़ियां प्यारियां जिहा आवाज़ां प्रोग्राम दे विच जरूर सांझियां कीतियां जाणगे। फिलहाल हरचरण गरेवाल, सुरेंद्र कौर दीआं खूबसूरत आवाज़ां विच एक गीत।

मुकम्मल नतीजे ऐलाने गए। पंजाब सरकार ने पटियाला अते लुधियाना नगर निगम के कमिश्नरां दे तबादले समेत 3 आईएएस अते 4 पीसीएस अधिकारियां दीआं बदलियां कर दित्तियां ने। भारत ने धर्मशाला विच 3 मैचां दी 1 रोजा क्रिकेट लड़ी दे पहले मैच विच अफगानिस्तान नूं 7 विकटां नाल हराया। अते औरतां दे आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप विच भारत दा पहला मैच अज बर्मिंगम च पाकिस्तान नाल होएगा। ते ए सन हुण तक दीआं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

जी हाँ प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार ते उम्मीद कर रही हूँ मैं कि तुसी इस गाने नु खूब इंजॉय कीता होएगा क्योंकि जी जिस तरह तुसी सानू याद करदे हो ना उसे तरीके दे नाल असी भी तुहानू याद करदे हां ते बस फिर इसे करके तो असी हाजिर हो जाने हां फिर कुछ दिन बाद तुहाडी सेवा दे विच ते नाल तुहाडे नाल बहुत सारियां गल्लां बातां करन लई वी ते प्रोग्राम चल रहा है जी गीतां दी बहार ते गीत 90s दे खूबसूरत जे ओह नगमे जिहड़े कि एवरग्रीन हिट ने ओह नगमे जिन्हां दे विच सिर्फ गीत नहीं हुंदे सी उस टाइम दे उत्ते गीतां दे विच अहसास हुंदे सी जज्बात हुंदे सी और बहुत ज़्यादा रूहानियत हुंदी सी आवाज़ां दे विच साडे सिंगर्स दियां और उहदे नाल नाल ही जिहड़ा एक्ट कीता जांदा सीगा ना उस टाइम दे उत्ते खास क्योंकि थोड़ी जी मासूमियत थोड़ा जिहा ओह जिहड़ा हुंदा ना लड़कपन का प्यार ओदियाँ भी थोड़ी जी जड़ा ना तड़का लग्या हुंदा सीगा उन्हां मूवीज़ दे विच भी ते उन्हां गाणियां दे विच भी बिल्कुल ते 90s दा एक होर बहुत ही खूबसूरत जिहा सोंग लता मंगेशकर ते हरिहरन की आवाज़ दे विच सुनान जा रही हूँ मैं तुहानू क्योंकि जदों इंसान प्यार दे विच हुंदा है तो फिर वो कहिंदा है कि जी मैं तो सारी दुनिया दे विच ऐलान कर दवां ते सारी दुनिया दे विच हर जगह दे उत्ते लिख दवां हवावां विच लिख दवां इन्हां फिजावां विच लिख दवां कि वो इंसान जिन्हों मैं प्यार करदा वो सिर्फ मेरा है ते मैं सिर्फ उहदा सुनदे इस खूबसूरत जे ट्रैक नू इंजॉय कर रहे हो तुसीं गीत बहार मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल आ रही हां इस गीत तों बाद फटाफट तों

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

जी हाँ, हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए। बिल्कुल जी, जदों असी जिंदगी दे विच एक इंसान नू अपना तन मन धन जड़ा अर्पण कर दिंदे आ ते फिर प्यार भी एक्सप्रेस करना जरूरी हुंदा है ना। असी कहने ते आ कि असी प्यार बहुत करदे आ पर असी एक्सप्रेस नहीं करदे, ते एक्सप्रेस करना जताना प्यार बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते दे विच। इसे करके तो दिलीप जी कहंदे ने जी, हर वेले सुबह शाम आते जाते मैं कहता हूँ आई लव यू, क्योंकि ये जरूरी है सामने वाले नू एहसास जताना, क्योंकि पता तो सारिया नू हुंदा है पर सुनना हर एक नू चंगा लगता है। प्रोग्राम गीत बहार तुसी इंजॉय कर रहे हो मेरे नाल, अपनी दोस्त वंदना दे नाल। इस खूबसूरत जी सवेर नू होर खूबसूरत बनाने लई मैं लेके आई हाँ बहुत ही सोहने सोहने जे नगमे तुहाडे वास्ते, इदां दे गाने जदों तुसी सुनोगे ते तुसी भी 90s दे उस एरा दे विच पहुँच जाते हो। मैनू लगता है मेरी तरह ही कि असी याद करते हैं वो गोल्डन पीरियड जड़ा है, वो गोल्डन एरा म्यूजिक का भी तो साड़ी जिंदगी का भी, क्योंकि 90s जड़ा सी ना वो वाकई बहुत ही अलग जड़ा है ना वक्त सीगा, बहुत अलग वेला सीगा। उन्हां दियां यादां जो सुनिया जांदियां मैमरीज ने उन्हां नू भी सुन के इदां लगता है कि असी वाकई उस जमाने दे विच पहुँच गए हैं। ते अगला ट्रैक भी एक बहुत ही खूबसूरत जिहा और रोमांटिक ट्रैक कि जदों कोई इंसान जिंदगी च आ जाए, दिल खुश हो जाए उन्हें मिलके, तो फिर होर जिंदगी च की चाहिदा हुंदा है, क्योंकि जिंदगी दियां बहुत सारिया मुश्किलां असीं उस इंसान दे नाल हसदे हसदे ही जड़ियां ना पार कर जांदे आ। सुनदे आ इस तरह का एक खूबसूरत जिहा नवा इदां दा, जदों तुसीं सुनोगे तो तुहानूं लगेगा कि ये फ्रैश एकदम ट्रैक है कुमार शानू ते साधना सरगम की आवाज़ के।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ए मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, एफ एम रेनबो की घड़ी के उत्ते वक्त हो गया जी 10:38:22 का। तो प्रोग्राम तुम इंजॉय कर रहे हो मेरे नाल गीत बहार। तो इस गीतां दे खूबसूरत जे सफ़र दे विच, गीतां दी इस बहार दे विच असी सुन रहे हैं 90s दे बहुत ही सोहने सोहने जे गाने, एवरग्रीन हिट सोंग्स, जिथे जज्बात ते दिलां दी गलबात और थोड़ा जिहा अल्लड़पन भी हुंदा सी। ते उस टाइम दे उत्ते ना जदों प्यार वर्गी जिहड़ी चीज़ सी, खैर अजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई ने चीज़ा, पर उस टाइम तो ना इन चीज़ा वास्ते समाज दे विच ना बहुत ज़्यादा, जे कोई भी इंसान इस राह ते पै जांदा सी ना तो उन्हूं बहुत सारिया जड़िया ने प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पैंदा सी, फेस करनिया पैंदियां सी। पर कहिंदे ने ना इश्क मुहब्बत इदां दी चीज़ है कि जदों इंसान इस राह ते तुर पैंदा ना तो फिर उन्हूं इहदे नतीजियां दा नहीं पता हुंदा। ते बहुत सारे इदां दे लोग सीगे उस टाइम दे उत्ते जिन्हां ने इश्क भी किया, जिन्हां दा इश्क कईयां दा परवान भी चढ़िया, कईयां नूं बहुत सारिया मुश्किलां दा सामना करना पिया, पर अखीर ओ लोग मिले जरूर। इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत जिहा गीत अनुराधा पौडवाल ते कुमार शानू की आवाज़ दे विच मूवी सड़क तो, अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी जिहड़ी तुसीं भी सारिया ने देखी होगी, इहदे विच किन्ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आंदियां ने संजय दत्त ते पूजा भट्ट दे जड़ी लव स्टोरी दे विच, इसे उत्ते डेडिकेट ये गाना खूबसूरत जिहा प्रोग्राम गीत बहार दे विच तुहाडे लई।

एक बारी फिर तो स्वागत है प्रोग्राम गीत बहार दे विच मेरे वालों यानी कि तुहाडी दोस्त वंदना वालों। गीत बहार गीतां दा एक इदां दा सफर जिहड़ा सानू लैके जांदा है पुराने एरा दे विच। जदों असीं याद करदे हां कि अच्छा हाँ ये गाना किन्ना सोहना सीगा ना, सच्ची ये गाना बहुत ही सोहना सी, तो याद ही भुल गया सी अवला गाना ते मैं कोशिश करदी हाँ कि उदा दे सारे ट्रैक्स जिहड़े ने ओह तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम दे विच हाजिर करां। अच्छा प्यार दी असीं गल कीती पर असीं ये चीज़ कदी देखदे हां कि प्यार हमेशा तकरार दे नाल शुरू हुंदा है। जदों तकरार हुंदी है, जदों लड़ाई झगड़ा हुंदा है ना पहला उत्थे ही बाद दे विच हौली हौली जड़ी है ना प्यार दी ये बेल जड़ी है परवान चढ़दी है। ते इदां दा ही एक खूबसूरत जिहा नोक चोक भरिया गाना अभिजीत कविता उदित नारायण ते सपना मुखर्जी दी आवाज़ दे विच तुसी इंजॉय करोगे मेरे नाल इस प्रोग्राम गीत बहार दे विच।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
3: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
2: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
2: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।

0: डॉक्टर जयप्रकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
3: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
0: जी।
3: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन 57 मिलियन US डॉलर का ये हमारे यहाँ से जाता है। ये ताजा फलों के रूप में जाता है और इसमें जो उसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिंग क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पचेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुत्फ उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूं कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं
0: जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
1: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है, दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
0: जी।
1: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन 15 दिन 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
0: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं जी। तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
2: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं
0: जी।
2: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं
0: जी। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के

0: आम सुन रहे हैं, आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
1: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के, जो आपने सुना होगा, जो दरभंगा में जो लखी बाग एने अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए माने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सीडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सीडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा राम केला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मिठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन 10 दिन 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं, और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री या यूएसए हो, तो उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह की खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन विभिन्न बाजारों के लिए। जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर्स में बनाई जाती है, और यहां जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए
0: जी।
1: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है। तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं
0: जी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
1: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसके आधार पर कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में वहां पे है, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
0: जी।
1: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे हो कि देश में कई मैंगो क्लस्टर है, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है, और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग हो

0: होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉयल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं
1: जी,
0: वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगे के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया है जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है या इरिडेशन, वो कराते हैं। फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो। वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से झुक जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे, और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब हमें
0: हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहां एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं, और सिंगापुर, हांगकांग ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है, और ये मैं कहूं कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूंगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वतन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथ हैं। डॉक्टर जय प्रकाश प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखे तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है, और उसमें अभी भी हर साल फल आता है। तो सबसे अच्छी अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता था हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
0: जी।
1: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
0: जी,
1: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
0: जी,
1: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
0: जी,
1: तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है,
0: गुण हो गया।
1: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
0: जी।
1: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योग

0: दान है नामकरण की
1: जी
0: प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुण है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो और नाम सुविधाजनक भी हो जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर आपने मैंजीफोरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है, लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
1: जी,
0: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है स्टैंडर्ड लिटरेचर है वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेसिक वजह ये।
1: जी डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
0: निश्चित रूप से आजकल देखें तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफॉर्म, जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है, उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे ले आके मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है, और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें, हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है। जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है, हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी,
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है, तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है।
1: जी अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में, आपका काम कब से शुरू होता है जब एक फसल सीजन जिसे कहा जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होते है, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं, उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं, जैसे हमने जो उसमें थाला बनाया लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है
1: जी।
2: उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण ठंड के कारण जो होते हैं उसमें मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको

0: करते हैं और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
0: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
0: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी।

0: और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज़्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं, वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। वो इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
0: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी। इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है।
1: जी, पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
0: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं।
1: जी,
0: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है, तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे, जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है। जी, और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
0: गाना तो मैं जो है किसान आदमी हूँ, तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना सुना।
1: जी ठीक है।

0: फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उठ जाता है।
0: जी, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है।
0: जी, मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो है आम उत्पादन के उनको बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो है वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती हैं और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियाँ जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामित है, घनामित है, निमा है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धति को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं, जिससे कि उसमें अंश भी ना बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर है या आकार होता है, जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूस डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा, और करीब 18 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही है जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है, उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट, चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं, तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं, जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले, और विदेशी बाजार में इसकी विशेष मांग रहती है, तो इसे बढ़ा

0: ना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असमय बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो, जैसे कि उन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4 से 5 किस्मों का समूह लगाते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पछैती होती है। तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है, और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से, हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है। जब एक्सपोर्ट वाली प्रायः किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है। तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान, अब आगे बढ़ रहा है उसे, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है। और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ अब हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए, और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है, और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं, और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा
1: जी।
0: लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से आता है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, केसर है, बैगन पल्ली है, तोता पर ये इत्यादि जाती हैं। इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है जो वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं, वो मध्यम मीठा चाहिए, वो खट्टा भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे, देसी किस्मों को तो हम खाएंगे ही, हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और 1-2 वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे, इस तरह से होता है
1: जी। बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है, और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है
1: जी,
0: वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे
1: जी। बिल्कुल।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जैसे हम टिकोरा कहते हैं या टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60-70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय, कच्चे आम का ही होता है और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है, जैसे कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75-80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं।

0: इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था, लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से ड्राइव कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति या परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए
1: जी।
0: अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की जा सकता है
1: जी। यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा
0: निश्चित रूप
1: जी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
0: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं
1: जी,
0: उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए
1: जी।
0: इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है
1: जी।
0: जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं
1: जी। मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे, क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है इसलिए?
2: देखिए जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे
1: जी,
2: से फल को नुकसान नहीं होता था, अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते जाते हैं
1: जी, वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल भी पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी, तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना चाहिए, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है, अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है
1: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाएगा,
2: वो भी सब धुल जाता है
1: जी। डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर

0: खाना है और ये हमारी देश की पहचान है। तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे
1: जी।
0: अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं। तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है
1: जी।
0: जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदें, चाहे कीटनाशक खरीदें, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पर आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसके उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूं कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी।
0: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहाँ तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहाँ के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आए, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खड़े उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा
1: जी। चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
0: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाया और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो। तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्त्रक्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसेबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है। तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं, किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज है, बायोसेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं ये अब खाने योग्य नहीं है, इसको आप फेंक सकते हैं। तो जो भी AI है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरे इंडस्ट्री को कर सकते हैं और ये क्षमता है, और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूं, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

0: परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए, और श्री अवनीश कुमार त्यागी नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल। आज इस खास प्रोग्राम दे विच खास इस करके क्योंकि आज जी संडे दी दोपहर ते सारी फैमिली अज घर इंजॉय कर रही है अपने नाल एक दूसरे दे नाल। अपनी कंपनी दे विच भी कई लोग बहुत वधिया खुश महसूस करते हैं, तो इस करके हो सकता है वो कल्ले भी रेडियो इंजॉय कर रहे होन, बट नाल नाल असी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है टिप्स एंड ट्रिक्स नाल नाल शेयर करते रहना है, तो तुसी बाद विच अपनी फैमिली नू भी दस सकते हो, तो फैमिली जिहड़ी है वह समझेगी कि भाई देखो किन्नी नॉलेज है इन्हां नू है हर चीज़ के बारे में। तो कोई गल नहीं जी, कहिंदे इनफॉर्मेशन जिहड़ी है नॉलेज जिहड़ी है जित्थों मिले लै लैनी चाहिए है, सीख लैनी चाहिए है। हाँ जी, तो असी अज गल कर रहे हैं समर दे बहुत सारे डाइटिंग दे डाइट प्लान्स दे बारे विच, ते किस तरह दे टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए ने गर्मी तो बचन वास्ते, क्योंकि मौसम जड़ा है ना वो पूरा ग्राफ दी तरह या फिर कह लो रोलर कोस्टर दी तरह उपर नीचे जा रहा है, कदी गर्मी बहुत ज़्यादा ते कदी मौसम एकदम ठंडा, ते इहदे विच बहुत ज़्यादा ध्यान रखन दी जरूरत है सानू अपना, क्योंकि इहनू ना असी इह वी कह सकदे जिद्दां कि तुसी न्यूज़पेपर्स दे विच वी पढ़िया होणा कि इह प्री मानसून बारिशां जिहड़ियां ने उह शुरू होईयां ने। इह जिहड़ी बारिश आई सीगी कल परसों इह प्री मानसून बारिश सी, दैट मीनस कि मानसून बहुत जल्दी जिहड़ा है वह पंजाब विच दस्तक देण वाला है, नॉर्थ इंडिया दे विच दस्तक देण वाला है। तो जदों आती है जी बरसातों की वारी, तो नाल नाल सानू ध्यान भी रखना पैंदा है अपना ते अपने खाण पीन का, क्योंकि है यह जिहड़ा हुण मौसम है ना यह रलिया मिलिया मौसम है। तो इहदे विच हुण असी फ्रूट्स की भी गल करांगे कि फ्रूट्स जिहड़े ने असी ओबवियसली सारे जणे कहिंदे ने कि पानी जिहड़ा है वह ज़्यादा होना चाहिए ना फ्रूट्स के, सीजनल फ्रूट्स जिहड़े कि जी तरबूज खरबूजा लीची आ गई है हुण, तो ये नाल नाल अंब जिहड़ा कि सारयां दा बड़ा फेवरेट है। तो पहले प्रोग्राम पोस्टबॉक्स 111 दे विच भी अज असी अंबां दे बारे विच बड़ी सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वह लिती, तो अंब खाण दा तरीका भी उत्थे उस प्रोग्राम विच एक्सपर्ट ने दस्सिया कि किद्दां खाणा चाहिए। अंब दे विच गर्मी बहुत ज़्यादा हुंदी है जिद्दां असी सुणदे हां सारयां तों कि गर्म हुंदा जी अंब घट खाओ, तो बचपन च मैनूं याद आ गई ये गल सुण के कि मेरे दादी जी की करदे हुंदे सी जदों अंब आंदे सी ना, तो उन्होंने अंब एक बाल्टी दे विच पा देने, और बहुत सारे पिंडां च हजे भी हुंदा होणा जरूर, तुसीं मेरी गल दे नाल रिलेट कर रहे होणे हो, क्योंकि बहुत सारे घरां दे विच हजे भी जदों अंब आंदे ने ते एक खो मतलब किसी भी पानी वाली चीज़ दे विच ओह पा के रख दित्ते जांदे ने खाण तों पहलां कि बई इहदे विच घंटा पए रहिण, उस तों बाद विच अंबां नूं कढ के फिर खाया जांदा है। ते इही सही तरीका है जिहड़ा कि मैनूं वी याद आ गया अज कि अंबां नूं पानी च रखो पा के, ते उहदी गर्मी जिहड़ी आ उह सारी निकल जांदी।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न ले रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

हाँ जी दोस्तों, एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है। स्वागत इस करके है क्योंकि प्रोग्राम दे विच अगला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जी। जी हाँ, FM रेनबो दी कड़ी जड़ी है ओ इस टाइम बजा रही है जी। पूरे एक बज के ते एक मिनट हो चुके ने ते तुसी असी दोपहर वल नू वध गए हां। धुप जड़ी है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होएगी हुण इस टाइम। मैं जाके जरूर देख के आई हूँ हुणे चक्कर मार के एक कि धुप जड़ी है तो जोरां शोरां ते निकली हुई है। खैर फिलहाल मौसम जड़ा बहुत सोहना है ते नाल नाल संडे दी दोपहर है ते तुसी भी इंजॉय कर रहे हो मेरे नाल बहुत ही सोहने सोहने गाणियां दे नाल नाल इनफॉर्मेशन भी। प्रोग्राम हुण स्टार्ट हो गया है जी मिड डे मेलोडीज़। अच्छा, अज दे इस प्रोग्राम दे विच कुछ खास जरूर होएगा। अज असी याद करांगे एक पासे तां परदे दे उत्ते अपनी सादगी ते शानदार अदाकारी नाल पछाण बनाउण वाले भारत भूषण जी दे बारे विच ते दूजे पासे अपनी खूबसूरत आवाज़ नाल संगीत प्रेमियां दे दिलां विच जगह बनाउण वाली गायक शारदा जी दे बारे विच। ते अज दा ए सुहाना सफर जड़ा है ए इना दे ही गीतां दे उत्ते होएगा। इना ए जड़ा खूबसूरत जिहा सफर है इहदे विच असी गल थोड़ी थोड़ी करांगे इना दे खास मूवीज़ दे बारे विच ते नाल नाल इना दी ही फिल्मां दे सोहणे सोहणे जे गीत जड़े ने ओह इंजॉय करांगे। तुसी मेरे नाल इस सफर दे विच इसे तरीके दे नाल बने रहना। फिलहाल इस प्रोग्राम दा पहला गीत मुहम्मद रफ़ी दी आवाज़ दे विच ते इस मूवी दे विच किरदार अदा कीता सी भारत भूषण जी ने 1960 दे विच सुपरहिट फिल्म बरसात की रात, जिहदे विच भारत भूषण ते मधुबाला जी दी जोड़ी जड़ी है वह दर्शकों ने बहुत पसंद की सी। और यह गीत जड़ा है ना वह हजे भी एवर ग्रीन गीत है, बहुत खूबसूरत जिहा गीत ते नाल नाल साहिर लुधियानवी दे बोलां दे नाल सजाया हुआ है। ये बहुत ही सोहना जिहा जिहड़ा नगमा जिहड़ा तुसी हुणे इंजॉय करोगे मुहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ दे विच। जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात।

सस्पेंस थ्रिलर सी, इस करके काफ़ी ज़्यादा जड़ी है हिट हुई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है स्टोरी। तो ये नाल ही इन्हें गीतों के भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना इस तरह की गलबात सी, क्योंकि मूवी जी सस्पेंस थ्रिलर से नाल ही गाने जड़े ने बहुत खूबसूरत जे ये फिल्माए गए, सैट किए गए गाने, तो म्यूजिक भी उन्ना ही फेमस होया जिनी कि इस मूवी ने अपने आप दे अपनी एक पछाण बनाई। मनोज कुमार ते नंदा स्टारर इस फिल्म दे विच मुहम्मद रफ़ी ते शारदा दी आवाज़ दे विच एक खूबसूरत जिहा ट्रैक है जिहड़ा कि मैं तुहानू सुनाउण लगी हां इस प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ दे विच। तुसीं किते नहीं जाणा, बने रहना मेरे नाल अपनी दोस्त वंदना दे नाल।

प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज़ ते तुसी हुणे एक गाना सुनिया जाने चमन मुहम्मद रफ़ी ते शारदा जी की आवाज़ दे विच। क्या खूबसूरत जिहा ट्रैक सी ओ, इदां लग रहा सीगा ओ लग ही नहीं रहा कि इन्ना पुराना इन्नी पुरानी मूवी का यह सोंग होएगा। इदां लग रहा सीगा कि हुणे दा कोई लेटैसट सोंग है क्योंकि आवाज़ दे विच जिहड़ियां हल्कियां हल्कियां उन्होंने लित्तियां सीगियां ना, शरारत भरियां थोड़ियां जिहियां स्पैशल कुछ भी जड़े एलीमेंट्स वो ऐड करते हैं। इदा लग रहा है कि जिदा कि ही इंजॉय करके गाना गाया जा रहा है, वो शरारत जड़ियाँ छोटिया छोटिया वो कि सोहनिया लग रही सी और बहुत ही सोहना जहा गीत मैं बहुत पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ कि तुहानू भी ये गाना जड़ा है ये ट्रैक बहुत सोहना लग्या होएगा। खैर फिलहाल मिड डे मेलोडीज़ दे विच असी अज गलबात कर रहे हैं जी शारदा जी दे लिखे दे गाए हुए बहुत सोहने सोहने ट्रैक्स ते नाल नाल मैं सुना भी रही हूँ तुहानू ते दे नाल नाल ही भारत भूषण जी दे उत्ते जिहड़े फिल्माए हुए गाने ने वो भी मैं तुहानू सुना रही हूँ। तो भारत भूषण जी जिहड़े सीगे जिद्दां कि मैं दस्सिया कि कई मतलब इस तरह के उन्होंने किरदार निभाए सीगे और इस तरह की जबरदस्त एक्टिंग सी उन्हां दी कि उन्हां दे नाल उस टाइम उन्हां दे कंपीटीशन दे विच शायद कोई सीगा नहीं। 1962 दे विच फिल्म संगीत सम्राट सेन दे विच उन्होंने महान संगीतकार तानसेन की भूमिका निभाई सी। फिल्म में उन्होंने नाल अनीता गुहा ने बहुत सोहनी जी परफॉर्मेंस दी, मतलब बहुत वधिया अभिनय किया सीगा। ते एस एन त्रिपाठी दे संगीत शैलेंद्र दे बोलां दे नाल सज्जिया होया एक बहुत ही खूबसूरत जिहा नगमा मूवी संगीत सम्राट तानसेन दी विचों दी।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल दुवाली गलबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में सेहत संभाल को बेहतर और किफायती बनाने लिए कई कदम चुके गए हैं। जनगणना 2027 तहत पंजाब च मकानों के सूचीकरण से गणना का पहला पड़ा तय समय से सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस से लोगों को स्वेच्छा नाल खूनदान करने की अपील की है। भारत अज आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में अपनी मुहिम की शुरुआत पाकिस्तान खिलाफ मैच नाल करेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन साल के हिस्से वजों आयोजित इस समागम में 120 तो वध भारतीय स्टार्टअप्स आलमी इनोवेशक तकनोलॉजी आगू ते उद्यमी इकट्ठे होणगे। इस समागम भारत के तेजी नाल वध रहे नवीनता इकोसिस्टम नूं प्रदर्शित करेगा। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ते राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष आलमी रणनीतिक भाईवाली विच प्रगति की समीक्षा करने लई दुवाली गलबात करनगे ते मुख खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते चर्चा करनगे। पहला नीस पहुंचण ते प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय भाईचारा ने होटल पहुँच के उन्हां दा निघा स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों नाल गलबात की ते सभ्याचारक पेशकारियां दा आनंद माणिया। राष्ट्रपति मैक्रों नाल गलबात ते दोपहर दे खाने दी दावत तों बाद श्री मोदी अपने दौरे दे अगले पड़ा ते स्लोवाकिया लई रवाना हो जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में सेहत संभाल नूं बेहतर ते किफायती बनाउण लई कई अहम कदम चुके गए ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों ते लोड़वंदां नूं इलाज प्रदान करती है, जदों कि जन औषधि केंद्र किफायती दवाइयां प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने अगे कहा कि मरीजों को घट कीमतों से स्टेंट और गोडियां ते इंप्लांट का लाभ होया है। इस तों इलावा मैडिकल कॉलेजों ते सीटां दे विस्थार ने डॉक्टर बनने के मौके वधाए ने। उन्होंने कहा कि सरकार एक सेहतमंद भारत बनाने लई अणथक मेहनत करती रहेगी। केंद्रीय सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ पिछले दहाके विच देश के सेहत संभाल खेत्र विच वड्डा बदलाव आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना तहत करोड़ों लोग नकदी रहित सेहत संभाल हासिल कर रहे हैं। इसका दायरा हुण सीनियर सिटीजन तक भी वधा दिता गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र राही किफायती दरां ते म्यारी दवाइया उपलब्ध कराईया जा रही ने। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अज दुनिया दीयां कई वड्डियां सेहत संभाल योजनावां नूं सफलतापूर्वक चला रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश यह यकीनी बनाना है कि किसी भी परिवार को बीमारी कारण माली बोझ का सामना ना करना पे। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। जनगणना 2027 तहत पंजाब च मकानों के सूचीकरण ते गणना का पहला पड़ा 15 मई तो 13 जून 2026 तक नोटिफाई समय दौरान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पंजाब के चीफ प्रिंसीपल सेंसस ऑफिसर ते डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन डॉक्टर नवजोत खोसा ने दस्या कि पहले पड़ा च गणना का काम पंजाब के 23 जिले ते 14 नगर निगमों में किया गया। उन्होंने दस्या कि योजनाबद्ध ते कुशल गणना की सहूलत लई कुल 52,564 हाउस लिस्टिंग ब्लाक बनाए गए सन। उन्होंने कहा कि रिहायशी हालात और घरेलू सहूलतों बारे व्यापक अंकड़े तैयार करने तो इलावा मकान सूचीकरण कार्यज ने जनगणना के दूजे पड़ा जरूरी ढांचा प्रदान किया है। जनगणना 2027 भारत में 16वीं ते आजादी तो बाद 8वीं जनगणना होगी। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस से लोगों को स्वेच्छा नाल खूनदान करने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि खूनदान किसी व्यक्ति को नवा जीवन देने का सब तो प्रभावशाली पवित्र मौका है।

खाली ही लौट आया हूँ मैं बाजार इश्क से, खाली ही लौट आया हूँ मैं बाजार इश्क से, यादें भी ना ला सका उसकी, इतना गरीब था मैं। बहुत ही सोना शेर साढ़े नाल साझा कर रहे ने राम सटू परोड़ा सुल्तानपुर लोधी तो। एक होर साढ़े दोस्त सानू मैसेज भेजते ने नंबर ते जो कि हैगा जी साढ़ा 9855-1010027 एदे ते टैक्सट मैसेज करके शेर साढ़े नाल साझा करते हैं। लिखते हैं कि दिल से मिले दिल तो सज़ा देते हैं लोग, दिल से मिले दिल तो सज़ा देते हैं लोग, प्यार के जज्बात को दबा देते हैं लोग, दो इंसानों का मिलना कैसे देख सकते हैं लोग, जब साथ बैठे दो परिंदे भी उड़ा देते हैं लोग। लोहा बाजार मलेर कोटला तो राकेश कुमार जी लिखते हैं कि नफरत ना करी असी सह नहीं पावांगे, नफरत ना करी असीं सह नहीं पावांगे, प्यार नाल एक बार कह दी तुसीं सानू चंगे नहीं लगते, खुदा दी कसम दोबारा मुड़ नज़र नहीं आवांगे। सो बहुत ही सोहने शेर साडे जिहड़े लिसनर्स ने साडे नाल सांझे कर रहे ने, ते तुसीं भी अपने जिहड़े हैगे ने शेर शायरी साडे नाल सांझे कर सकदे हो साडे नंबर ते जो कि हैगा जी 9855-1010027। ते एक अगली गज़ल बहुत ही प्यारी जी भुपिंदर सिंह ते मिताली सिंह होरां दी आवाज़ विच तुहाडे लई पेश कर रही हां।

मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नज़रअंदाज करूँ तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सो जाऊँ बेपरवाह तेरी तरह। गोपी रेरू जो कि जलंधर तो ने साढ़े नाल एक शेर साझा कर देने लिखते हैं कि दिला की करी जाना वादू अपना मौजूद ना कर, जग मखौल उड़ाएगा तू लिख अपने तो दूर ना कर, इहो जग भैड़ा यही जग भैड़ा तू बेगाना मुखदा नूर ना कर, रह तू खुश बन के दिला होरां दी अखदा सरूर ना बन। सो ये जरा महफिल है इदा ही सजी हुई है, तो इस महफिल दे विच होर भी मतलब चार चंद लगाने लिए होर प्यारी जी गज़ल तुहाडे लिए पेश कर रही हूँ।

आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। धन्यवाद रक्तदाता। 14 जून 2004 को पहली बार वर्ल्ड डोनर डे मनाया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस की दुनिया भर के रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान के लिए धन्यवाद देने और रोगियों और दाताओं दोनों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का सम्मान करने का अवसर है। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदान से जुड़े आपके प्रश्न और जिज्ञासाओं का स्वागत है। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर भी हैं, पधार चुके हैं, पर सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि वो 125 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं और उनको एम्स के सेंचुरियन डोनर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। एक बहुत हस्ती बड़ी हमारे साथ है और उस बड़ी हस्ती के साथ एक बहुत बड़ा दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा की, जो चीफ रह चुके हैं जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली के, और साथ ही कई वर्षों तक आप प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में। प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स के नॉर्थ इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल में। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा का।
1: नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सेंचुरियन डोनर कैसा है, कैसा कैसे मिला आपको ये, जो आपका इतनी बड़ी उपाधि है ये?
1: ऐसा है कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज में जब एंटर ही किया तो पहले मेरे पिताजी को, फिर मेरे माताजी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, और जब ब्लड डोनेशन की बात हुई तब पहली बार शायद मैंने ब्लड डोनेशन किया। और क्योंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष के नीचे से लोगों से ब्लड नहीं लिया जाता है वेस्ट में, हालांकि शुरू हो गया कि 16-17 साल का व्यक्ति भी अगर जैसे वेस्ट की तरह है या तो उससे भी लिया जा सकता है। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और फिर मैंने ये नियम बना लिया कि साल में 4 बार मुझे ब्लड डोनेशन करना ही है। और इसलिए मेरे सब एम्स के स्टाफ के लोग भी सब जानते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन, मेरे भांजे का जन्मदिन, मेरी माताजी का जन्मदिन और मेरी पत्नी का जन्मदिन, ये 4 दिन ऐसे जो 3-3 महीने के अंतराल पे आते हैं, और उन दिनों में क्योंकि वो तारीख याद रहे। अच्छा। तो उस दिन सुबह 8 बजे, क्योंकि हम लोग ब्लड डोनेशन के बाद हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके काम भी करते हैं, ओपीडी भी करते हैं, सब काम करते हैं, तो सुबह 8 बजे ही समय रहता है, तो ब्लड बैंक स्पेशली आधा घंटा पहले उस दिन शुरू हो जाता है। फिर मेरी पत्नी का जन्मदिन 28 दिसंबर को रहता है, तो एक बार जब वो छुट्टी थी तो मैंने 1 जनवरी को दिया, तो मेरे ब्लड बैंक वालों ने ये बोला कि सर जब आपने 1 जनवरी को ब्लड दिया तो हमें खूब उस साल यूनिट मिले। तो फिर उसके बाद ये नियम मिल गया कि 1 जनवरी को वहां जाके ब्लड देना ही है।
0: तो आप जो नए साल की शुरुआत करते हैं वो रक्तदान से करते हैं,
1: सुबह 8 बजे।
0: अरे वाह, क्या कहना है। और इसीलिए मैं ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इससे बेहतर हमें आज के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल सकता था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया कि कई बार अब तो शायद गिनती भी करते हैं कि गिनती करते नहीं हैं आप।
1: एक्चुअली वो लोग करते हैं, वो मुझे बताते हैं।
0: अच्छा। तो एक बहुत अच्छा मौका है श्रोताओं, आपको अगर कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आ रहा है रक्तदान से संबंधित, रक्तदाता से संबंधित, क्योंकि डॉक्टर साहब आज यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत सारे मिथ्स जो हैं इससे जुड़े हुए, बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग समझते हैं। मैं आगे जब कार्यक्रम बढ़ेगा तो जरूर हमें प्रश्न भी आएंगे इस तरह के कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, रक्तदान करने से ये होता है, वो होता है, तो हम चाहेंगे जरूर उन मिथ्स को आप ब्रेक करें। पर जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं तो यहाँ पे स्टूडियो में डॉक्टर साहब के सामने बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहब को, तो मुझे जो लगता है डॉक्टर साहब क्योंकि इतने फिट, हैंडसम, यंग है,
1: धन्यवाद,
0: बिकॉज ऑफ आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज यू डोनेट सो रेगुलरली,
1: दैट इज सो ट्रू। एक्चुअली ये बिल्कुल सच है और इसके बारे में तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर

0: मैं एक मोटे तौर पे किसी को सिंपल भाषा में समझाना चाहूं कि एक जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ नहीं खाते पूरे दिन, लेकिन से दुनिया का मानना है कि आप कुछ नहीं खाते लेकिन आपके स्वास्थ्य में वर्धन होता है और आप फिट होते हैं और आपके बॉडी के सिस्टम बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो जब हम इसके बारे में और बात करेंगे, कुछ रक्त शरीर से निकलने से एक जो एक रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ ब्लड पे ही नहीं होती है, ब्लड तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है दोबारा, लेकिन जो पूरे बॉडी पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है, मैं ये समझता हूँ इसी तरह से है जिस तरह से आप व्रत रखते हैं और आपको स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है, इसी तरह जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जितने भी इसके स्वास्थ्य के बारे में अच्छे इफेक्ट बहुत से बताए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो सब संभव है और सत्य है।
1: तो इस एक पूरे घंटे यानी 4 बजे तक हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे स्टूडियो में, और आप रहिएगा अपने रेडियो सेट के साथ या अपने फोन के साथ, क्योंकि हम इस पर बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी लेंगे, किस तरह से डोनेट किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है और क्या कोई परेशानी होती नहीं होती, बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं प्रश्न, पर आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती हैं, मिथ्स भी होते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ और बातचीत करिए रक्त दान पर। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर आते हैं लौट कर।

0: जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी हाँ, रक्त सबसे अनमोल उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। पर्याप्त संख्या में स्वस्थ लोगों द्वारा नियमित रक्तदान की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी और जहां भी रक्त की आवश्यकता हो वो हमेशा उपलब्ध रहे। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पर जुड़े हैं, आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। हेलो
1: हेलो
0: जी जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में।
1: हाँ जी, नमस्कार जी आप दोनों को।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
0: जी जी,
2: धन्यवाद। आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला हरियाणा से।
2: जी नमस्कार मिसेस बेदी।
1: नमस्कार जी,
0: आप कुछ पूछना भी चाहती हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और सही कहा आपने,
1: बधाई के पात्र हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं हूँ डायबिटिक 32 साल से
2: जी,
1: और 25 साल से मैं योगा में हूँ, वहाँ की हेड हूँ। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि डायबिटिक का ब्लड डायबिटिक को भी क्यों नहीं दे सकते।
2: सो डायबिटीज में ना आपको बहुत सारी इन्फेक्शंस का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी भावना को भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा एक बेसिक जो रूल है, कभी भी हम कोई भी चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ट्रांसफ़र

0: करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो है कोई भी किसी तरह की इन्फेक्शन का रिस्क या किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, किसी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये रहता है कि कई बार जो है वो डायबिटिक्स बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं, अगर आपको बहुत सारी मेडिसिंस मिल रही हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो वो सब चीज़ें हैं जिसको वो ब्लड देते हैं उसके लिए कुछ नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखती हैं। तो उस सेफ्टी को देखते हुए ये नियम कड़ा रखना पड़ता है।
1: मेरा बहुत दिल करता था, मैं कॉलेज टाइम में ब्लड दिया हुआ है, मेरे ब्रदर रेगुलर डोनर रहे हैं, हस्बैंड भी देते रहे हैं, पर मेरे को मन में ये रहता है, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा ये करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत
0: जी। मैं आपसे यही कहने वाला था मिसेज बेदी कि आप इस कार्यक्रम में फिर भी एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, आप
1: तो उनको
0: जी वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर ऑल हमारे दी हुई एक यूनिट से तो पूरा काम नहीं चलता, लेकिन जो लोग मोटिवेट होते हैं और जो लोग और देते हैं उसी से ही देश का और समाज का और दुनिया का भला हो सकता है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप एक्चुअली मुझसे ज्यादा बधाई की पात्र है, क्योंकि मेरी बात तो एक व्यक्ति की बात है और आप जो है इतने लोगों से डोनेट कराती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे वही है कि स्टूडेंट से टीचर जो है वो ज्यादा महान होता है।
1: तो इस तरह से कहती हूं कि देखो, हम अगर हमें ब्लड की जरूरत है, हम चाहते हैं हमें फटाफट ब्लड मिल जाए, पर जब हमें देने की बारी आती है हम क्यों पीछे।
0: और वो खेत में नहीं उगता, पेड़ पे नहीं लगता, बना हाँ। नहीं सकते, तो फिर देना ही पड़ेगा।
1: मैं थोड़ी रिबेलियस टाइप हूं, मैं तो डांट करती हूं कि
2: बहुत
1: शुक्रिया,
2: बहुत धन्यवाद,
1: गोल्ड मेडल के हकदार
2: जी बिल्कुल। और ये गोल्ड मेडल हमने आपको भी दिया आकाशवाणी की तरफ से, रेनबो की टीम की तरफ से, क्योंकि मिसेस बेदी आप भी एक बहुत बड़ी जो मोटिवेशन का काम कर रही हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है आपने, और इसी तरह से आप जैसे लोग कुछ और हो जाएं हमारे अगर समाज में, तो जो ये समस्या है कि रक्त नहीं मिलता है समय पर, वो समस्या ना आए किसी को।
1: मेरी कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरे मदर को एक बार ब्लड की जरूरत थी, तो हमने 4 डोनर बुलाए, उनको लकीली चढ़ानी ब्लड, हमने वो सारा ब्लड डोनेशन में दे दिया। वो कहते हैं, लोग कहते हैं पैसे ले लो, नहीं, दान है ये, बहुत बड़ा दान है,
2: बहुत बड़ा दान है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन पे जुड़ने के लिए और इतनी इतनी प्रेरणादायक बातें करने के लिए। हमारे बहुत सारे श्रोता इंस्पायर हो रहे होंगे आपसे आज।
1: डॉक्टर आपको सलाम है मेरा,
0: नमस्कार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि जैसे ये बता रहे हैं मिसेस बेदी की ये डायबिटिक है, ये ब्लड नहीं दे पाती है, तो इस तरह के और कौन सी लोग हैं जिन जो लिमिटेड है, नहीं दे सकते हैं, कोमोर्बिडिटीज हैं
0: जी? सबसे पहली तो एनीमिया है, अगर आप में ही खून की कमी है तो। इसी तरह से किसी का भी रक्त लेने से पहले उसका कुछ फिटनेस स्टैंडर्ड होता है।
2: अच्छा।
0: जैसे कि वेट जो है, वेट आपका एक बिल्कुल लिमिट से नीचे नहीं होना चाहिए। 50 किलो या 45 किलो अलग अलग ब्लड बैंक रखते हैं, 50 किलो सेफ है, तो इतना आपको होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 13 ग्राम होना चाहिए। और आप किसी तरह की बीमारी जो किसी तरह से भी रक्त जिसको दिया जाता है उसको इन्फेक्शन उससे हो सके, जैसे कि हेपेटाइटिस है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, या किसी को HIV की इन्फेक्शन है, या किसी को कोई कैंसर है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हमें कारण पता नहीं लगा है, तो ऐसी बीमारी भी संभवतया कभी ना कभी ऐसा पता लगे भविष्य में कि वो इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसी सब बीमारियां जिनमें कि किसी को भी प्राप्त करने वाले को किसी तरह का भी जोखिम हो सकता है, उन लोगों को हम लोग मना करते हैं। इसी तरह एक एज भी आप पूछेंगे जरूर, तो 65 साल उम्र नॉर्मली रखी जाती है, लेकिन कई कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां लोग फिट होते हैं वो 70 तक भी देते हैं, कई देशों में ये 60 तक ही है, पर 65 एक मैं समझता हूँ इसका ठीक एक बैलेंस्ड एक फिगर है कि 65 साल की एज तक आप ब्लड दे सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, जब कोई ब्लड डोनेशन करने की इच्छा जाहिर करता है, जाता है डोनेशन के लिए, तो क्या ये सारी चीजों का टेस्ट पहले किया
0: जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका आपका आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, इनफैक्ट जो क्वेश्चनियर भरने को बोला जाता है, जो प्रश्नावली होती है आपके लिए, उसमें ये भी पूछा जाता है कि आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया, आपने नाश्ता किया कि नहीं किया। जवान लोग होते हैं, कई बार बहादुर बहुत होते हैं कि बोलते हैं नहीं, हम सुबह नाश्ता नहीं किया, चल दिए, देर हो रही है कि हम रास्ते में ब्लड देते हुए जाएंगे। तो वो ऐसा काम भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप रात में ठीक से सोए, क्या आपने ठीक से

0: खाना खाया, क्या आपको कुछ दिन पहले खांसी जुकाम हुआ है?
1: अच्छा।
0: तो खांसी जुकाम भी जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसमें आप डोनेट नहीं कर सकते। क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? अगर आपका उस समय ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, बहुत लो है दवाओं की वजह से, तो ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है आपका। और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों की सेफ्टी जरूरी है, आप एक व्यक्ति का नुकसान करके दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकते। आपका देने वाले का चाहे जितना मर्जी अच्छा इमोशन हो, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो कई बार हमें उन्हें मना करना पड़ता है।
1: जी जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो।
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम जी को शालीनता के साथ रघुविंदर सिंह चड्ढा का नमस्कार।
1: नमस्कार चड्ढा जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी प्रश्न कर
2: लें। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्कार चड्ढा साहब।
2: डॉक्टर साहब आज मैं आपको बधाई नहीं दूंगा क्योंकि जब पिछली बार आप आए थे तो आपने कहा था मेरे को बहुत बधाई होगी, अब मुझे बधाई की जरूरत नहीं है।
0: शुभकामनाओं की हमेशा जरूरत रहती है जी। बधाई ऐसा है कि जो काम अपने कर्तव्य की तरह किया जाता है उसके लिए बधाई में थोड़ा सा, मैंने पिछली बारी मुझे याद है आपको यही बताया था कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है, तो इतना सारा बधाई ऐसे लगता है कि कोई ऐसा कुछ काम किया जो बहुत ही विशेष है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये कर्तव्य है और कर्तव्य करने के लिए इतनी ज्यादा बधाई मिलना थोड़ा सा एम्बेरसिंग है।
1: तो आप आज क्या कहना चाह रहे
2: हैं? मेरा पहला प्रश्न से पहले मैं ये कहूंगा, रक्तदान मीन्स वक्त दान। अगर हम अपना रक्तदान करते हैं तो हम किसी का जीवन आगे बढ़ाते हैं
0: जी।
2: और मेरा क्वेश्चन ये है कि रक्तदान करने से कितने टाइम पहले हमको कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए?
0: अगर कोई नॉर्मल जैसे आप मेडिसिन कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की लेते हैं वो तो आपको लेते रहना है। अगर आप कोई ऐसे लेते हैं जैसे कोई नींद की दवाई लेते हैं या इस तरह की दवाई लेते हैं तो उनको कम से कम 24 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। पर ये अलग अलग दवाओं के लिए ये अवधि अलग अलग होती है। पर अगर आप वैसे भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर ले रहे हैं तो आपको रक्तदान ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी दवाई है जो आप नॉर्मली लेते हैं जैसे थायराइड की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, तो वो आपको वैसे भी लेनी ही चाहिए। रक्तदान देने के लिए आपको उनको बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये बात जो है ना वो ऐसी चीजों के लिए आती है कि अगर कोई नींद की दवाई लेता है कुछ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां लेते हैं जैसे कि आप ब्लड थिनर लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ब्लड डोनेशन वैसे ही अलाउड नहीं है। तो आप हार्ट प्रॉब्लम है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। या आप खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हें बंद करें, क्योंकि उनसे जो होने वाला रिस्क है वो आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप जब ब्लड बैंक जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई दवाई आपने पिछले 24 घंटे में ली है या कोई और दवा है जो आप रेगुलरली लेते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड सवाल तो लिखे ही होते हैं। अगर आपको मलेरिया डेंगू भी हुआ है तो भी उसकी हिस्ट्री में अगर आप है तो आपसे ब्लड नहीं लिया जाता है। तो अगर किसी बीमारी के लिए शॉर्ट टर्म आप दवा ले रहे हैं तो आपको वैसे ही उसके पूरा रिकवर होने के बाद ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं उस पे बेसिस पे आपके ब्लड बैंक वाले डिसीजन ले लेंगे कि उस समय लेना ठीक है कि आपको फिर दोबारा अगर बुलाया जाए तो। पर ज़्यादातर जो अगर क्रॉनिक डिसीजेज हैं जिनमें बहुत दवाई लगातार लेनी पड़ती है उसमें ज़्यादातर में फिटनेस का इशू रहता ही है थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप पता कर ले और ज्ञान रखें इस बात का, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में बताया जाएगा कि मैंने कुछ बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको बताया, अगर दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी बीमारी अगर आपको है तो आपको डोनेशन नहीं करना है, लेकिन आप कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं जैसे मिसेज बेदी कर रही है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी हम बता दें अपने श्रोताओं को कि आज जितने भी गाने बज रहे हैं वो आपकी पसंद के हैं, आपने खासतौर पर ये लिस्ट तैयार कराई है गानों की प्लेलिस्ट जो कि, और जो अब अगला गाना जो बजने वाला है उसके उस गाने के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे मैं श्रोताओं को
0: जी।
1: कितनी अच्छी है गाना
0: जी। जी मेरी माता जी का ये हमेशा से हमें संस्कार रहे कि हमेशा मदद करो, कमज़ोर की मदद करो, गरीब की मदद करो। कभी अगर हम हरिद्वार जाते थे तो वो देख के किसी कहती थी इसने खाना नहीं खाया, किसी ने अगर आके बोला खाना नहीं खाया तो बोलेंगे इसको खाना खिलाओ, अगर किसी को बोला कि कभी बोलती थी इन सबको चाय पिला दो, तो उनको ये बड़ा दुखदाई लगता था कि कोई भूखा रहे, उन्हें बड़ा दुखदाई लगता था कि किसी को ठंड लग रही है कुछ है। तो एक जो ये इस तरह का जो प्रभाव हमारे चरित्र पे हम तीनों भाई बहनों के पड़ा वो माता जी के इन्फ्लुएंस से पड़ा। तो मुझे लगा कि आज जब हम दान की बात कर रहे हैं और आज हम लोग भी माता पिता हैं, श्रोताओं में बहुत सारे भी माता पिता

0: होंगे तो हम भी अपने बच्चों को प्रेरणा कर सकते हैं जिस तरह से सौभाग्य से हमें प्रेरणा मिली, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए क्योंकि उन्हीं ने ये संस्कार हमें दिए, मैं चाहता था ये गाना।
1: आप, उन्होंने एक ऐसा बेटा और बहुत सारे ऐसे आपके जो भाई बहन जो आप बता रहे हैं जो सब इसी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह के बच्चे इस दुनिया में लाए जो बाकी लोगों की मदद करें। मैं देख रही हूँ भावुक हो रहे हैं डॉक्टर साहब इस समय और अपनी माता जी को याद कर रहे हैं, हम सबकी ओर से भी उनको नमन। सुन लेते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, बहुत प्यारी होती है माँ, और वो माँ जो संस्कार देती है अपने बच्चों को, और सही संस्कार, सही लालन पालन से ही एक इंसान बनता है जो दूसरे के दर्द में दर्द महसूस करता है, और उसी के दिल में सच्चा दिल होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। और ऐसे ही एक शख्स, ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आप चीफ रह चुके हैं JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स नई दिल्ली में, साथ ही साथ कई वर्षों तक आप प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स में, और अभी प्रेजेंटली आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स नॉर्थ इंडिया अपोलो हॉस्पिटल में। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कई बार ब्लड दे चुके हैं, यानी जितनी बार मैक्सिमम पॉसिबल है मैं यही कहूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि साल में 4 बार ही दे सकते हैं, वो 4 बार देते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं मैसेज के माध्यम से, हमारे एक श्रोता फोन पर भी वेट कर रहे हैं। आप बताइए, पहले फोन लूं कि पहले मैसेज लूं?
1: फोन वाले के पहले बात कर लेते हैं।
0: कर लेते हैं, चलिए जैसा आप कहें। हेलो,
2: रेडियो डॉक्टर की आन बान शान शालिनी मैम को बेहद शालीनता से नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको,
2: और ब्लड डोनर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं ब्लड डोनर राजेंद्र करमपुरा से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है। सवाल तो मेरा ये है कि मतलब जब हमें ब्लड देना है तो क्या खाली पेट भी ब्लड दिया जा सकता है, जब फास्ट रखते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है
1: जी।
2: और दूसरा सवाल ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते में या महीने में या फिर साल में कितनी मर्तबा ब्लड डोनेट कर सकता है या उसे करना चाहिए? सुझाव मेरा ये है सर प्लीज, क्योंकि एफएमरे में पूरा हिंदुस्तान सुनता है, अभी नहीं हमारे जितने बॉडी पार्ट्स है जो डोनेट किए जा सकते हैं हमें वो सब डोनेट करने चाहिए। और इस मामले में सरकार को, एनजीओ को, जो भी संस्थाएं हैं बिजनेस, उनको कुछ इसको कोई पुरस्कार कोई इनाम वनाम रखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है
1: जी। बहुत अच्छी बातें कही आपने। सबसे पहली बात यह कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये टेक्निकल है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी तरह का होने का अगर आप मिल जी आप बहुत बहादुर हैं और आप खाली पेट दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी अगर आपको खाली पेट ब्लड देने से कुछ समस्या होती है तो उसमें पूरे कार्यक्रम को नुकसान पहुंचता है। लोगों को ऐसा लगता है जी कि उन्होंने ब्लड दिया वो उनके साथ उनको घबराहट हो गई या कुछ हो गया, तो बल्कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको हम कुछ खिला के, बिस्किट या उनको कुछ जूस वाला ड्रिंक या फ्रूट वाला ड्रिंक पिला के, पानी पिला के तभी भेजते हैं, और उनको कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं उनकी और उनसे पूछा जाता है कि आप ठीक फील कर रहे हैं, तभी उनको भेजते हैं। तो इस तरह की तो सुझाव मैं आपको नहीं दूंगा कि आपको खाली पेट ब्लड देना चाहिए आपको, बल्कि प्रॉपरली नाश्ता करके और तब खाना खा के तब डोनेशन करना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, 3-3 महीने के अंतराल पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कोई आप डेट 3-3 महीने बाद वाली जो आपको याद रहती हो ऐसा आप कर सकते हैं। और जो आपका सुझाव है बहुत अच्छा है। हमारा एम्स का जो जहां मैंने 44 साल में रहा वहां पे नियमित रूप से ब्लड डोनर्स को, खास करके जो लोग नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते हैं उनको बुला के उनका सम्मान किया जाता है। पुरस्कार कोई राशि वाली बात इसमें नहीं होती है, लेकिन एक दूसरों को इससे इंस्पिरेशन मिले और इस पर्पस से किया जाता है, तो उसमें जो सेंचुरियन डोनर्स हैं उनको शील्ड भी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, या सबसे बड़ी बात

आती है कि उनसे ये कहा जाता है कि आप दो शब्द कहें कि आपको, जैसे शालिनी जी ने आज मुझे बार बार पूछा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, और मिसेज बेदी से कहा कि आप कैसे लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज में जागरूकता हो, ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हों। हमारे यंग जो है, हमारे युवा है, वो भी एक हमारा इसमें एक उद्देश्य रहता है कि वो इस कार्यक्रम में आ गया है। और आपको जैसे शालिनी जी ने बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर का प्रमुख था, और कई बार ऐसा होता था कि एक जवान आदमी एक्सीडेंट के साथ आया तो उसको 20 25 30 बोतल ब्लड भी चढ़ जाता था, और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता था, या हम किसी अटेंडेंट को ढूंढते भी नहीं थे कि कोई ब्लड देने आएगा तो हम इसको ब्लड देंगे। तो उसी को देख के समय समय पर हम कभी लायंस क्लब के साथ, कभी दूसरे क्लब के साथ जब कैंप करते थे, CRPF वाले, CISF वाले, BSF वाले, कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस रेगुलरली नियमित रूप से एम्स में आके ब्लड डोनेशन करते, दूसरी जगह भी करते हैं, रोटेरियंस है, तो बहुत सारे लोग जो है, कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं कि आपको एकदम एक

0: कार्यक्रम में आ गया है और आपको जैसे शालिनी जी ने बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर का प्रमुख था और कई बार ऐसा होता था कि एक जवान आदमी एक्सीडेंट के साथ आया तो उसको 20 25 30 बोतल ब्लड भी चढ़ जाता था और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता था या हम किसी अटेंडेंट को ढूंढते भी नहीं थे कि कोई ब्लड देने आएगा तो हम इसको ब्लड देंगे। तो उसी को देख के समय समय पर हम कभी लायंस क्लब के साथ कभी दूसरे क्लब के साथ जब कैंप करते थे CRPF वाले CISF वाले BSF वाले कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस रेगुलरली नियमित रूप से एम्स में आके ब्लड डोनेशन करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं, रोटेरियंस है तो बहुत सारे लोग जो है कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं कि आपको एकदम एक ऐसी फीलिंग आती है कि कितना लोग तत्पर है एक जान बचाने के लिए दूसरों की और एक बहुत ही अच्छी खुशी की अनुभूति होती है और ये सब बधाई के पात्र है और उनका पुरस्कार उस खुशी में ही है कि उनके ब्लड से किसी की जान बच गई। लेकिन अक्सर ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: जी जी, और मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी जो उन्होंने कहा कि ऑर्गन डोनेशन की भी बात होनी चाहिए, तो हम ऑर्गन डोनेशन पर भी कार्यक्रम करते हैं और समय समय पर ये बात कहते रहते हैं कि किस तरह से हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने डॉक्टर साहब और बोली कि FM रेनबो को पूरे भारत में सुना जा रहा है, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सुना जाता है, ग्लोबल है हमारा, क्योंकि आप इसको सिर्फ 102.6 पर ही नहीं सुन रहे हैं, आप इसे प्रसार भारती ऐप न्यूज AIR पर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज इसको अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे यानी आकाशवाणी के जितने भी चैनल हैं, सिर्फ FM रेनबो दिल्ली ही नहीं, जितने भी चैनल हैं आप उनको सुन सकते हैं और उनसे इसी तरह से प्रेरणा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम ना सिर्फ जानकारी देते हैं, ना सिर्फ सूचना देते हैं, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, ये सारे पैकेज कंप्लीट पैकेज होता है। बहुत सारे श्रोता है जो सर जुड़ गए हैं हमारे साथ मैसेज के माध्यम से और सारे सारे यही लिख रहे हैं कि वो आज इंस्पायर हो चुके हैं और कोई तो डोनेट करने आज ही जा रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूं, एक तो ये प्रवीण गुवाहाटी से लिख रहे हैं कि कैन आई डोनेट ब्लड, आई एम 71 इयर्स ओल्ड।
0: जी प्रवीण जी, थोड़ा देर हो गई है, 71 साल की उम्र में आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो कई बार हम लोग 80 साल के व्यक्ति का भी हड्डियों का ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि जैसे वो 40 साल का हो और उसको उतना ही उससे काम लेना है, लेकिन ये जो नियम है, लॉ है, ये काफी और गाइडलाइंस है काफी स्ट्रिक्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाख या 1 करोड़ या पूरी समाज की पूरी दुनिया का भी फायदा करके हमें ये लिबर्टी नहीं मिलती है कि एक भी व्यक्ति का किसी तरह से नुकसान हो, और ये सब नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इसमें सेफ्टी जो है वो पूर्णतया सुरक्षित वो रहे,
1: किसी और को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मुझे ये लगता है इनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं कि ये आज का कार्यक्रम सुन के मोटिवेट हुए और चाहते हैं डोनेट करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बेटे को या घर में बहू को, अपनी बेटी को मोटिवेट कर सकते हैं डोनेट करवाने के लिए ब्लड। और चंद्र प्रकाश जी हमें लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, ब्लड डोनेशन के लिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब, और किस एज तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: सो 18 से 65 साल की आयु तक के स्वस्थ व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट रक्त दान कर सकते हैं, और जो कट ऑफ है जिसको हम कहते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो स्त्रियों में 12 ग्राम कम से कम होना चाहिए और पुरुषों में 13 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप सेफली पूरे सुरक्षा से ब्लड डोनेशन रक्तदान कर सकते हैं।
1: उमेश कुमार जी लिख रहे हैं खयाला से, नमस्ते, एक आदमी एक टाइम में कितना ब्लड डोनेट कर सकता है और इसकी पूर्ति कितने दिनों में हो सकती है, क्या इससे कमजोरी आती है?
0: जी, तो बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे। अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 350 ml है, और मैं आपको बता दूं कि इंसान के शरीर में करीब करीब 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ब्लड रहता है, और क्योंकि फिगर 10% से कम है तो इसमें 350 ml किसी भी 60 किलो के व्यक्ति को देने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जो उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें हमारे रक्त में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा रहता है और एक सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो तो 48 घंटे में पूरा हो जाता है, और इसलिए कोई वॉल्यूम की 24 से 48 घंटे के अंदर ही वॉल्यूम की कमी तो हो जाती है पूरी। जो सेल्स होती है वो 4 से 6 हफ्ते लेती है, और इसलिए सेफ्टी

0: के लिए आपको डबल इंटरवल दिया जाता है कि आप 3 महीने बाद आके दोबारा ब्लड दे सकते हैं। और जहां तक कमजोरी की बात है तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, अब बहुत सारे लोग और भी जिनको मैं जानता हूं जो बहुत बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो हम लोग सुबह ऐसा भी रहा है कि सुबह 8 बजे ब्लड डोनेट करके पूरे दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किए। आप बिल्कुल सामान्य रूप से अपनी सामान्य जो आपका दिनचर्या है उसका पालन कर सकते हैं बिना किसी कमजोरी को महसूस किए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैंने आपसे कहा कि जैसे पहले एक श्रोता ने कहा कि खाली पेट ब्लड दे दे या रात को सोए नहीं है या ठीक से खाना नहीं खाया है ठीक से, तो वो सब चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक स्वस्थ तरीके से एक दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सिस्टम है जो ब्लड बैंक की फैसिलिटी है उसको इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हो। बल्कि जैसा कि अभी हम शायद मुझे पता है कि शालिनी जी जरूर बात करेंगी, उसका फायदा जरूर होता है आपको, आपको शारीरिक रूप से भी फायदा होता है, आपको जो अच्छा लगता है या आपकी मानसिकता में पॉजिटिविटी आती है और आपको ये फीलिंग आती है, आपके दिल को अच्छा लगता है कि आपने किसी की जान बचाई। और कभी आपको देखना हो तो आप देखें किस तरह इमरजेंसी में हमारी इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में या बाकी इमरजेंसीज में किस तरह से आपका दिए हुए रक्त से लोगों की जान बचती है और लोगों के परिवार बचते हैं, जिसमें एक युवा व्यक्ति किसी की जान जा रही हो या किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए ऑपरेशन होना जिससे उसकी जान बचती है और वो पूरे परिवार पे आपका जो है वो एहसान रहता है, वो आपके लिए आभारी रहते हैं आपके, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पूरा काम कर सकते हैं, स्वस्थ फील करेंगे और कुछ इसमें कमजोरी नहीं होती
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मानसिक रूप से एक बहुत संतुष्टि मिलती है, एक कि हमने किसी की मदद की, एक नेगेटिविटी जो आपके अराउंड चारों तरफ रहती है आज के टाइम में वो शायद कहीं ना कहीं कम भी होती है, लेकिन फिजिकल, मैंने सुना है कि फिजिकल भी फायदा होता है एक डोनर को कि नए ब्लड सेल्स बनते हैं और उसके कारण शायद हार्ट अटैक की समस्या कम हो सकती है, ये मैंने सुना है। आप एज अ स्पेशलिस्ट बताएं।
0: बिल्कुल, मैंने इसीलिए इसमें एक संदर्भ शुरू में किया था, एक कंटेक्स्ट सेट किया था कि एक जब आप फास्ट करते हैं व्रत रखते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत एविडेंस है कि जब आप व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस होती है जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, हालांकि आपने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरह से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और कुछ स्टडीज में ये कहा गया कि हार्ट अटैक की संभावना 88% तक कम हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को इससे फायदा होता है, आपकी स्किन की से जुड़ी हुई त्वचा से जुड़ी बीमारियों में फर्क पड़ता है, इसमें आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ावा होता है। और एक और ऐसी बात होती है, देखिए हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सारे पॉइजंस को बॉडी से निकालता है और जब लिवर में बहुत सारा आयरन अगर इकट्ठा हो जाए तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेसिटी को कम कर देता है। जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आयरन उसमें से जो है वो निकल जाता है, तो लिवर की भी डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्षमता है उसमें से जो आपके जिसको हम एक्चुअली पॉइजन ही कहते हैं, विषयुक्त जो भी केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिन्स हैं जिनको बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, उनको साफ करने की, रक्त को साफ करने की क्षमता लिवर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कुछ फायदे हैं, पूरे मैं शायद गिनाऊंगा तो कार्यक्रम ही
1: खत्म हो जाएगा।
0: जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान नहीं होता और बहुत सारे फायदे आपके शरीर को मिलते
1: हैं। बहुत सारे आपने गिनाए, तो हमारे मन में जो कई हमारे श्रोताओं के मन में ये जो मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए वो खत्म हुए होंगे कि आप सिर्फ दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य वृद्धि भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, कीवी किचवाहा में लिख रही हैं, दिल्ली में रहती हैं, 19 साल की हैं, लिख रही हैं, एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड टू डोनेट ब्लड बट माई एज वॉज नॉट अलाउंग मी टू डोनेट अर्लियर, सो नाउ आई एम एलिजिबल टू डोनेट, तो मुझे कुछ बताएं व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक, वेयर शुड आई डोनेट, where I have to register myself, how many times I can donate, तो how many times आप बता चुके हैं ये precautions और ये कहाँ register हो सकते हैं?
0: कहीं भी register हो सकती है, आपको कोई register करने की जरूरत भी नहीं है, आप किसी भी अपने मन पसंद, ऐसा है कि अगर कोई ऐसी dispense, ऐसी कोई hospital है जहाँ से आपका कोई सगा संबंधी इलाज करा के ठीक हुआ है, आपको कोई hospital है जहाँ जो आपके घर के पास है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और समय समय पर

0: कैंप लगाए जाते हैं, और जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें भी इनफैक्ट बहुत सारे जो ब्लड बैंक है, जिस तरह हमारा जो एम्स का ब्लड बैंक भी है, हमारे बहुत ही वहाँ पे कर्मठ मेरे सहयोगी जो रहे हैं वहाँ हैं, तो हमारी मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन्स भी जाती हैं, दूर दराज इलाकों में जाती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गांव में या सबर्बन एरियाज में। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत जैसे सब लोग सुन रहे हैं, तो गांव के सरपंच जो हैं वो अगर एक निवेदन करें अपने एरिया के कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, तो वहाँ चलता फिरता ब्लड बैंक वहाँ भी आ सकता है, और वहाँ पूरे दिन सुबह से शाम तक अगर कुछ जो देना चाहे। तो अगर आप ब्लड देना चाहते हैं, दान देने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आपके लिए हजारों संभावनाएं हैं, कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक में चले जाएं, रजिस्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी डिटेल वो वैसे भी नोट करते हैं और वो आपके डेटा बैंक में है, पर अभी भी ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है जहाँ पे समय समय पर फोन पर आपको प्रॉम्प्ट दे के या SMS दे के या उसके द्वारा याद दिलाया जाए। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जो प्राइवेट लैब्स हैं वो आपको फोन करती रहती है कि आपका अब हेल्थ टेस्ट ड्यू है, आप आ जाइए। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको समय समय पर ऐसा मैसेज आए कि आप क्या आप डोनेट करना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आपकी ही पसंद का एक और गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेज है, हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं। तो ये गीत सुन लेते हैं और कहीं जाना नहीं है, आपको रहना है रेडियो डॉक्टर में। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी मैं लूंगी मैसेज, क्योंकि लगभग वही बातें हैं, पर जो भी जहां भी आप बताना चाहें जरूर बताएं। यशपाल लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार टू शालिनी मैम एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर मल्होत्रा, सैल्यूट टू यू डॉक्टर मल्होत्रा फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। माई क्वेश्चन इज वॉट इज अ फैक्ट इन इंडिया अबाउट एक्चुअल ब्लड रिक्वायरमेंट एंड ब्लड डोनेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट।
2: तो जैसे कि है, इतना बड़ा देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी जितनी हमें ज़रूरत है उससे अभी हमें आपूर्ति नहीं हो पाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनुअली प्रति

0: वर्ष हमें करीब 15 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन ब्लड की जरूरत पड़ती है और लगभग 12 लाख के करीब जो है वो डोनेशन होते हैं. उनमें से बहुत सारे ऐसे डोनेशन है, देखिए डोनेशन दो तरह से होती है, एक तो वॉलंटरी डोनेशन होती है कैंप्स के थ्रू होती है या लोग वैसे ही जाके डोनेट करते हैं कि मेरा मन करता है, मुझे अच्छा करने का मन है. दूसरा ये है कि आपका कोई रिश्तेदार भर्ती है और उसका ऑपरेशन होना है तो उसके लिए जो आप उनके लिए जो डोनेशन देते हैं डोनेशन है. तो ये सब तरह की डोनेशन मिला के भी अभी आपूर्ति नहीं हो पाती है. और जैसे मैंने कई बार कहा कि कई बार एक जान बचाने के लिए 40 45 50 यूनिट ब्लड भी लगता है, तो इसलिए अभी हमें और वॉलंटरी डोनेशन की जरूरत है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और डॉक्टर साहब, हर मैसेज में आपके लिए तारीफ है, हर मैसेज में है, और सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हमारा प्रणाम पहुंचाइए, हमारा नमस्कार पहुंचाइए. पर एक जो मैसेज आया जो मुझे अभी दिखा है वो मेरी तारीफ भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ क्या.
0: जी जरूर.
1: आपकी इजाजत हो तो. डियर रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी, सादर प्रणाम. रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रोड्यूसर है ना. जी हाँ बिल्कुल हूँ, सही आपने पहचाना. पहली बार शायद आपकी खूबसूरत दिलकश आवाज सुन रहा हूँ. और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी के बारे में जानकर मैं भी ब्लड देने के लिए प्रेरित हो गया हूँ. मैं आज शाम ही ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं. मैं कभी ब्लड डोनेट अभी तक नहीं किया हूं, तो बहुत अच्छी बात ये इन्होंने लिखकर भेजी है. मोहम्मद सरफराज आलम हैं जो कि हार्ट दर्शना बाजार अररिया बिहार से. दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से. सर आपकी निस्वार्थ जनसेवा के लिए बहुत बहुत बधाई. आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न दीर्घायु की शुभकामनाएं. कृपया बताएं कि किस उम्र तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है.
0: 18 से 65 साल की उम्र तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है.
1: जी सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मेरी उम्र 43 इयर्स है और हर साल मैं ब्लड डोनेट करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ऊपर नहीं जा रहा है. इसके लिए मैं क्या करूं? आप पिछले साल भी आए थे, हमने आपको सुनकर, हम आपकी बातें सुनकर बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं.
0: जी तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो पुरुष है उसका अगर हीमोग्लोबिन 12 है तो एक बार आप जांच जरूर कराएं डॉक्टर से कि अगर आयरन की कमी है तो आयरन की कमी आपको या फोलिक एसिड की या B12 विटामिन की कमी है तो वो सब आपको कैप्सूल और दवा के थ्रू भी कंप्लीट की जा सकती है. इसके अलावा अगर आप नेचुरल चाहते हैं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि सेब और चुकंदर के सेवन से भी आपको इस चीज से आपको मिल सकता है. इससे जो और जो हमारा रक्त है उसमें बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से और प्रोटीन से बनता है, तो नेचुरली अगर आपकी डाइट ठीक है. कई बार गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनको क्रॉनिक, एक तो उनको ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसका कि हमें कारण नहीं पता, लेकिन अक्सर उनका हीमोग्लोबिन 8-9 से ऊपर जाता ही नहीं है. इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर जाता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कई बार हमें ब्लड निकालना पड़ता है क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा उनके अंदर बॉडी के अंदर आयरन जमा हो रहा होता है. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन 12 पे तो ब्लड आपका लेना मुश्किल होगा, कम से कम उसको 13 तक लाएं तभी हम ब्लड दे पाएं.
1: जी जी. और ये लगभग ऐसा ही आपने जो बताया आर्थराइटिस है इनको 14 वर्ष से. राजू कुमार आजमगढ़ से लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कि मुझे आर्थराइटिस है 14 वर्ष से और क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ.
0: नहीं, आपको दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए, आप इसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं है. कोई भी क्रॉनिक डिसीज जो होती है उसमें एनीमिया अपने आप ही हो जाता है जिसको कि हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए देना मुश्किल होता है.
1: जी मैसेजेस बहुत हैं पर हमारे श्रोता काफी देर से फोन पर वेट कर रहे हैं. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है.
2: नमस्कार
1: जी. नमस्कार.
0: नमस्कार
2: जी. डॉक्टर साहब को नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
2: जी मेरा एक सवाल था, जो कहते हैं 40 की उम्र के बाद ब्लड कम बनता है.
0: जी ऐसी कोई बात नहीं है, 40 तो एकदम युवा अवस्था होती है, 40 में तो 18 घंटे काम करने की उम्र होती है. जो ब्लड कम बनता है एज के साथ में, उसमें ज्यादातर जो मैंने जैसे बताया कि सामान्य सीमा जो है 65 साल ली जाती है. आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, 65 साल से पहले के अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप बेधड़क रक्तदान कर सकते हैं.
1: जी मनोहर लाल गांधी जी लिख रहे हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, उम्र 60 के बाद क्या हम रक्तदान कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर साहब बता चुके हैं रक्तदान करने के बाद हम डाइट में क्या ले सकते हैं. अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है. जब आपको ब्लड ग्रुप मैच करने की तब आवश्यकता होती है जब कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए ब्लड दे रहे हैं, लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें अगर वो रक्त जो है उसके अंदर किसी तरह की रोग के चिन्ह नहीं है और आप पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसके

0: लिए हमेशा हमें कोई ना कोई जो रिसिपिएंट मिल जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम रक्त जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, उसको मैच करके डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारे पास बैंक का मतलब ये है कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको अगर 200 रुपए के नोट चाहिए कि 100 के नोट चाहिए कि 50 के चाहिए, आपको वहां से मिल जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ब्लड बैंक है उसमें हर तरह का ब्लड रहता है। तो आप जैसे लोग जब दान करते हैं तो हम उसको ग्रुप करके रख लेते हैं, और जब किसी को उस व्यक्ति को उस ग्रुप की ब्लड की जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। तो इसलिए आपको इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दान करें, और जैसा कि कहा जाता है, दान करें और भूल जाएं, कभी ना देखें कि आपका दान जो है उस दिए हुए से वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है, नाम नहीं लिखा है, पर वो लिख रहे हैं कि मैं ओ पॉजिटिव हूं, तो क्या इससे ब्लड ग्रुप से भी कोई फर्क पड़ता है दान पे?
0: जी, कोई ब्लड ग्रुप नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि जिसका भी ब्लड ग्रुप रेयर होता है वो हमारे लिए बहुत ही VIP होता है, क्योंकि जब उस ग्रुप के व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रेयर ब्लड ग्रुप है तो उसको मैचिंग ब्लड ग्रुप मुश्किल से मिलता है। तो ओ पॉजिटिव तो मेरा भी ग्रुप है और
1: यूनिवर्सल डोनर होता
0: है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जरूर दें।
1: सुमित लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से कि मैं 31 इयर्स का हूं और मैं आई एम पेशेंट ऑफ क्लॉट इन माय ब्रेन एंड हाई बीपी, तो क्या मैं रिकवरी के बाद ब्लड डोनेट कर सकता हूं, और क्या ब्लड थिनर मेडिसिन इफेक्ट करती है ब्लड डोनेशन?
0: जी बिल्कुल, ब्लड थिनर पे अगर आप हैं तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे इन्होंने बीमारी के बारे में, कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आप अस्थायी रूप से अनफिट हो जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, जैसे आपको खांसी जुकाम है, आपको कुछ इन्फेक्शन हो गई, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, उससे जब आप रिकवर करते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रॉनिक बीमारी जैसे मैंने आपको कहा उसमें रख देना जो अच्छी बात है।
1: जी डॉक्टर साहब, शिवम हमें लिख रहे हैं कनेक्टेड फ्रॉम आर्चिन जर्मनी, और ये लिख रहे हैं कि मैं 28 इयर्स का हूं और माय क्वेरी इज सी अबाउट प्रिकॉशंस एंड स्टेरिलाइजेशन मेजर्स वन शुड चेक बिफोर डोनेटिंग ब्लड ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो।
0: तो ब्लड बैंक्स जो है वो बड़ी ही रिप्यूटेड संस्थाएं हैं और उनके रेगुलर चेक होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग होती है और बहुत ऑडिटिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं आज की डेट में ब्लड डोनेशन करने जाएंगे, वहाँ स्टैंडर्ड्स की कोई इशू है, क्योंकि सब डिस्पोजेबल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, और एजेंसीज हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रेगुलरली इस चीज को एश्योर करती है, और जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे उस पर देखा जाता है, जो कि बहुत ही, वैसे इंसिडेंट होना बहुत ही रेयर है आपको बता दूं, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये बहुत प्रायोरिटी होती है कि ब्लड देने वाले की सुरक्षा, हमारे लिए ब्लड जिसको मिलना है उससे ज्यादा ब्लड देने वाले की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दे रहा है वो निस्वार्थ दान दे रहा है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा आदमी रोगी है, उसका दूसरा प्रायोरिटी है, वो दान लेने वाला है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि किसी की मदद करने के लिए आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: जी गुड आफ्टरनून, टुडेज टॉपिक इज नोबल वन ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस। FM रेडियो हैज लैक्स ऑफ फैंस टुडे, प्रोग्राम हैज मोटिवेटेड मेनी पीपल कि वो डोनेट करें और इस फियर से बाहर निकले। सैल्यूट टू डॉक्टर साहब फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं हमारे श्रोता। और एक और हमारे पास मैसेज आया है, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप मैडम आपको भी नमस्कार, मैं शबनम हूं, 125 बार मैं रक्तदान करने वाले डॉक्टर को बधाई देना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से। मेरी बेटी की उम्र 19 साल है, लंग इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन बताया गया, तो क्या ऐसी अवस्था में रक्तदान करना सही है?
0: जी बिल्कुल नहीं, जब उनको इस बीमारी से रिकवर करने दें और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये भी मुझे हिसाब से अनलेस कि इनको कुछ ज्यादा खराब इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जिसमें ठीक होने में समय लगे, पर 19 साल के अगर वो किसी टेम्परेरी बीमारी से ग्रसित है लंग्स की, तो ठीक होने के बाद डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर कहूंगा कि जितने लोगों ने आज मुझे इतनी खुल के बधाई दी है, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम एक बार मुझे सही धन्यवाद देने के लिए जाके डोनेट जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो डोनेट करते रहें, मेरे लिए वो धन्यवाद ज्यादा आवश्यक और ज्यादा अच्छा रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस विशेष दिवस पर आप यहाँ हैं हमारे साथ, डॉक्टर रहे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो चीफ रह चुके हैं JPN एपिक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और तो हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। नमस्कार स्वीकार करें, शालिनी मित्तल का नमस्कार एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुत

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: की वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जरा गीत है ना कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये मेरे दिल के ना बहुत पास है, क्योंकि मैं जद कदे भी अपने घर तो कुछ दिनों दे लिए दूर जानी है ना, तो मेरे जेडे मदर ने वो अक्सर ये गाना गा के मैनू सुनांदे ने। ते जिहड़े भी लोकी अपने घर तो दूर रहिंदे ने, मैं उन्होंने जरूर कहूँगी कि यार 6 दिन असी अपनी वर्क नू देने आ, प्रोफेशनल लाइफ नू देने आ, पर एक दिन विचों कढ के अपने मदर्स नू एटलीस्ट फोन करया करो, तो उन्होंने उन्हों का हाल चाल पुछया करो। तो साढ़े जिहड़े कॉलेज ने वो भी साढ़े नाल जुड़े हुए ने, नंबर जो हैगा साडा 9855101027, इस नंबर से जुड़े हुए ने, व्हाट्सएप पर सानू लगातार मैसेजेस कर रहे ने, अपने गाने की फरमायश कर रहे ने। तो एक फरमायश की है, फरमायश आई है करणदीप सिंह जो कि पिंड हैगा बाठू चक, कहिंदे ने कि मैं 3rd क्लास का स्टूडेंट हाँ, तो मैं एमए वर्क उन्हों का कोई गाना सुना दो। सो असी थोड़ी फरमायश जरूर पूरी करांगे। तो जिहड़े साडे कॉलर अजे भी सुन रहे ने प्रोग्राम पर साडे नाल जुड़ नहीं रहे, भाई क्यों नहीं जुड़ रहे तुसीं, है नंबर जदों असीं अनाउंस कर दिता है, नंबर साडा हैगा जी 9855101027 9855101027। इहनूं तुसीं इहदे ते तुसीं सानूं टैक्सट मैसेज करके अपनी एतवार दीआं कहानियां साडे नाल सांझियां कर सकदे हो, नाल ही नाल अपने मनपसंद दे गाने दी फरमायश भी कर सकदे हो। फिलहाल करणदीप होरां दे गाने दी फरमायश जिहड़ी हैगी असीं पूरी करांगे, तो बाद तुहाडे गाने दी फरमायश भी जरूर पूरी करांगे।

एक जरूरी सूचना, असी अपने स्रोतियां दी जानकारी लिए दस दिए कि आज शाम 6:30 बजे एजबेस्टन बर्मिंगम इंग्लैंड विखे आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तहत भारत ते पाकिस्तान दियां महिला टीमां विचकार खेडे जाण वाले T20 मैच दी ऑफ ट्यूब कमेंट्री अपने दिल्ली केंद्र तों सुनावांगे, पर FM रेनबो दे प्रोग्राम तुसी FM रेनबो ऐप ते सुनदे रहोंगे। सो प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो अपनी दोस्त ते होस्ट आर्जरिया दे नाल, हैलो जलंधर। ते साडे एक बहुत ही प्यारे लिसनर ने बहुत ही प्यारा जिहा मैसेज भेजिया सानू एतवार दे दिन ते, आओ पढ़दे हां। लिखते हैं कि मैडम जी नमस्कार, बचपन में सानू 19 जून नू स्कूल दियां छुट्टियां पै जांदियां सन ते 20-22 जून तक बारिश हो जाती सी ते साडे माँ बाप सानू खेतां विच झोना लाउण लई रोज़ सवेरे सवेरे लै जांदे सन। सानू अज भी वह दिन याद आउंदे ने, असीं कहिंदे सी सुत्तियां ना ही पै जाण, सुत्तियां ना ही पैण तां चंगी गल है। तुसीं मेहरबानी करके गुरु रंधावा जी का कोई भी गाना लगा दिओ। ठीक है जी, तो यह मैसेज आया पुरशोत्तम नीलम तन जो हैगे ने कपूरथला तो बागा पुराना तो। सतनाम सिंह रखड़ा भी कहिंदे ने कि मैं आकाशवाणी जलंधर का तकरीबन 50 साल पुराना स्रोता हाँ, रेडियो नाल सफ़र वधिया चल रहा है ते गीत की जिहड़ी फरमाइश कर रहे हैं तुहाड़ा गीत भी असीं तुहानूं जरूर सुना देंगे। तो इदां ही बहुत सारे जिहड़े होर साडे लिसनर ने साडे नाल जुड़े हुए ने लगातार साडे वट्सएप नंबर ते जो कि हैगा जी 9855-10-10-27-9855-10-10-27। फिलहाल असीं एक फरमाइश पूरी करन लगे हाँ गुरु रंधावा होरां दी आवाज़ दे विच जो गाने दी उन्होंने कही सी, तो उस तों बाद आपां तुहाडे गाने दी भी फरमाइश जरूर पूरी करांगे।

0: नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम युवाणे विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडी दोस्त आरजे सिमरन ते मेरे नाल ने
1: आरजे प्रीति। ते सिमरन ते प्रीति दे नाल शुरू हो गया प्रोग्राम युवाणी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते अज असी गल्लां बातां भी करांगे तुहाडे नाल, एंटरटेनमेंट भी फुल होण वाला है क्योंकि अज दे साडे सैगमेंट जिहड़े ने ओह बहुत ज़्यादा खास ने।
1: खासम खास संडे नूं उदां ही स्पेशल बना दिंदा है जदों फरमाइशां पूरियां हुंदियां ने।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते प्रीति, सब तो पहला अपने लिसनर्स नूं अज दे प्रोग्राम दा वेरवा देना जरूरी है। क्यों?
1: जरूर सिमरन जरूर, वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि जे पता ही ना होवे कि प्रोग्राम च होना की है तो फिर स्वाद कादा आएगा।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल कि तुसी यूफोरिक फील कर रहे हो, मतलब तुसी
1: बहुत
0: एक्साइटेड और
1: ज्यादा
0: खुश फील कर रहे हो।
1: बहुत ज्यादा।
0: ते जड़ा साडे सेगमेंट है इदा सिंपल जा मोटिव है कि तुहाडे जड़ा शब्दा दा पटारा है उन्नू खजाना किद्दां बनाना शब्दा दे नाल, तां जो नवे नवे शब्द जड़े असी तां सीख ही रहे हां तुहाडे नाल, तुसी भी साडे नाल सीखो ते उहनां नू यूज च लियाओ।
1: ते सिमरन हुण मैं गाना सुनना चाहनी हां ते अपने लिसनर्स नू भी सुनाने हां, थोड़े एक्साइटेड यूफोरिक फील आपां भी कर लिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते पेश करन जा रहे हां जी तुहाडे लई बादशाह नेहा कक्कड़ दा गाना करगी चल।

0: हो गया जचुल, बहुत एंजॉय किया ते आई होप तुसी भी बहुत एंजॉय किया होगा सिमरन।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, असी तो जरा स्टूडियो च माड़ा जिन्ना नाच गाना भी कर लिया है क्योंकि इंजॉयमेंट भी जरूरी है। जो असी इंजॉयमेंट करा तो ओबियसली साड़ी गल्लां चो भी इंजॉयमेंट आएगी, तो साढ़े लिसनर्स भी सानू सुन के जरा इंजॉय कर पाएंगे।
0: गल्लां तो मैनू याद आया सिमरन, साड़ी तहजीब दा दे अज टॉपिक भी उही है, तहजीब जिहड़ी है गल्लां दे विच भी बहुत होनी चाहीदी है।
1: बिल्कुल, तो अज जिहड़ा साड़े तहजीब सैगमेंट का टॉपिक है वह भी यही है कि तुसी गल्लां बातां विच यानी कि कहन तो भाव प्रीति है कि किस सिचुएशन विच किस टोन या किस तरीके नाल बोलना मीन
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि आपां घर दे विच किसे तरीके नाल गल करदे आ ते बाहर किसे होर तरीके नाल गल करदे आ,
1: क्योंकि साडी फिर लाइफ उत्थे अलग अलग हो जाती है ना। दोस्तों नाल असीं अलग तरीके नाल रहिंदे आ, अपने फैमिली मैंबरस नाल असीं अलग तरीके नाल रहिंदे आ, जदों असीं ऑफिस वगैरह जाना होए ते उदों साडा तरीका कुछ होर हुंदा।
0: इसे तरीके नाल आपां इक लग के आए छोटी जी तहजीब जिहदे विच तुसीं जानना है कि किवें तुसीं कित्थे किद्दां गल कर सकते हो। सब तो पहली गल, जे तुसीं किसे मतलब घर दे विच बोल रहे हो तां उहदे विच हाँ जी नॉर्मल होंदी है, लेकिन थोड़ा तरीके नाल गल की जा सकती है क्योंकि घर दे विच सारे अपने ही होंदे है।
1: बिल्कुल, ते अपने पन ना प्यार ना तुसी गल करो। वैसे

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा जी युवानी ते मैं तुहाडी दोस्त आरजे सिमरन ते मेरे नाल ने
1: आरजे प्रीति
0: ते सैगमेंट चल रहा सी जी साडा तहजीब, जिदे विच पहला सी गल कीती कि सानू घर विच किवें गल करनी चाहीदी है, सानू बच्चियां नाल किवें गल करनी चाहीदी है। ते हुण मैनूं लगदा कि दोस्त नहीं पिछे रहने चाहीदे, क्यों प्रीति?
1: दोस्तां नाल ते जिद्दां मर्जी गल करो, ओह तो बुरा भी नहीं मानदे, पर
0: एटिकेट्स जरूरी है। एटिकेट्स जरूरी है। दोस्तां नाल तुसीं खुल के हस के उठ के जिद्दां भी तुसीं गल करना चाहो कर सकदे हो, पर एक लिमिट विच, क्योंकि अगले नूं माड़ा नहीं लगना चाहीदा तुहाडी गल दा।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब हुंदा ये है सिमरन कि आपां कोई गल कहनी है, चाहे आपां उहदा मजाक उड़ा रहे हां, बट सम टाइम उह इन्ना लिमिट क्रॉस कर जांदा कि शायद उहनूं बुरा लग जाए।
0: बिल्कुल, और सब तो जिहड़ी मैनूं खराब गल ये लगदी है कि उहनूं ये चीज़ बुरा लग जांदा और सानूं ये चीज़ फील भी नहीं हुंदी कि उहनूं बुरा लग रहा है।
1: बिल्कुल, ते इसे करके जदों भी बोलना भी है थोड़ा तरीके ना कि उहनूं बुरा, सामने वाले नूं बुरा नहीं लगना चाहीदा, अपने आप नूं भी बुरा ना लगे, इहो जी भी गल नहीं कहड़ी, ठीक है? ते गल लो कहो
0: कि होर मत सोची कह दो। बिल्कुल, होर मत तुसी गल पहला कह दो, बाद च सोची जाए हाय मैं उहनूं अद्धा क्यों कहा,
1: क्यों कहता, नहीं कहना ही नहीं चाहीदा सी। अच्छा, मैं इदां सोच लेनी सी, लेना चाहीदा सीगा ना कि मैं एक वारी आ गल
0: कर। बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओहदा बैटर है, उस तों बैटर है कि तुसी थोड़ा इक उसे टाइम 10 मिनट सोच लो फिर बोलो।
0: बिल्कुल, ते इस दे नाल ही हुण रह गया कि असीं जदों ऑफिस च जाने हैं ते उस उदों असीं किवें गल करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना सेम हुंदा है, जिवें घर च गल करदे ने उवें बाकी सारिआं नाल गल करदे ने, चाहे वह ऑफिस होवे, तुहाडी परसनल लाइफ होण, तुहाडे रिलेशनज होण, या फिर तुहाडा दोस्ती वाला जिहड़ा नेचर है उही क्यों ना होवे, पर कहिंदे आ ना कि सिचुएशन दे हिसाब नाल टोन, तुहाडा गल करन दा तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करदा।
1: इसे करके ऑफिस दे विच जिहड़ी गल हुंदी है उह काफ़ी तरीके नाल, काफ़ी प्रोफेशनली, ते मतलब उह कहिंदे ना एटिकेट्स दा सब तो वड्डा पार्ट जिहड़ा आ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਔਫਿਸ, ਮਤਲਬ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ।
0: ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਫਰਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

0: माई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं बहुत बढ़िया इसे करके यू पढ़ी था। जो प्रोग्राम ही होंगे ना वो भी हस खेड के होंगे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ऑफिस असं गल कर रहे हैं, ऑफिस भी तरह तरह के लोग होंगे ने, मतलब बॉस होंगे ने, मैनेजर होंगे ने, साडे कलीग्स होंगे ने, सो सारे ना तरीका जरा अलग होंगे। जो तुम मीटिंग च मतलब चीज़ों रीप्रजेंट कर रहे हो उदो थोड़ी टोन कुछ होर होंगी है। सो गल कहन का मेन मोटिव यही है कि अपनी जी तहजीब बोलन लगी वो जरूर ध्यान दिया करो कि की बोल रहे हो, किनू बोल रहे हो, तो किवें बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम वधिया तरीके ना गल करते हो ना तो 90% काम आप ही बन जाता।
0: सिमरन हुण गल्लां बातां ते बहुत हो गई, हुण गाउंदा पंजाब जिहड़ा सैगमेंट शुरू करना है, ते छेती छेती अपनी फरमाइशां लैके ना आ जाओ साडे कोल, तुहाडी फरमाइशां दा असीं वेट कर रहे हां। तुसीं की करना है, नंबर डायल करना है 0181 2342 174, ते अपनी तुसीं जिहड़ी फरमाइश है वो फेसबुक मैसेंजर ते भी भेज सकदे हो,
1: ते फेसबुक मैसेंजर ते तुसी अपनियां फरमाइशां सानू भेजदियां ने, ते असीं इंतजार करांगे तुहाडियां फरमाइशां दा, क्योंकि तुहाडियां फरमाइशां असीं पूरियां भी करनियां ने। ते उदों तक लई मैनूं लगदा है कि प्रीती सानू ना अपनी फरमाइश एक जरूर चलवा लेनी चाहीदी है जदों तक सानू लिसनर्स दी फरमाइश आई।
0: चलो शुरू करदे आं फिर, फरमाइशां दा कोटा पूरा करदे आं अज।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।

0: सो दोस्तों, टाइम जेहड़ा है थोड़ा घट ही है अपने को, ते फरमाइशा जेहड़ी है सिमरन बहुत ज्यादा हैगी है हुण।
1: ते
0: सर
1: फरमाइशा नू देख के इदां लगदा कि दो तीन फरमाइशा असी समय दे रहिंदे पूरियां नहीं कर पावांगे। क्यों?
0: इस करके जिन्नियां भी होणगीआं आपां जरूर पूरी करांगे। साडी जेहड़ी अगली फरमाइश है ओह दीपक जी कर रहे ने, हजे पटियाला तो ही फरमाइश आ रही है। ते उन्हां ने किया है कि जॉर्डन संधू दा वन इन अ मिलियन सॉन्ग जेहड़ा प्ले कर दो जरूर जी, असी तुहाडी फरमाइश जरूर पूरी करांगे।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सो प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो लव यू जिंदगी अपनी दोस्त होस्ट चार्ज रिया दे नाल। ते अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच आपां बहुत सारियां गल्लां बातां कीतियां कि किवें जिहड़ा पैसा है वह एक टाइम ते साडे सारिआं दी एक मनोकामना हुंदी है कि यार एक्सेस ऑफ वैल्थ, सानूं बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए है। पर एक टाइम ते आके ना यह जिहड़ा एक्सेस ऑफ वैल्थ है वह कितें ना कितें साडे गल दा फंदा बन जाता है। तो अज्ज दी इस कॉन्वर्जेशन तो, अज्ज दी इस डिस्कशन तो ना आपां एक चीज़ ते सीख के जा रहे हैं कि पैसा अपनी थान ते हुंदा है, पर जिहड़े रिश्ते हुंदे ने ते रिश्तिआं दी मजबूती हुंदी है अपनी थान ते हुंदी है। तो पैसे नूं कदे वी सानूं इन्नी नहीं देनी चाहिए तवज्जो कि साडे रिश्तिआं नूं उह संबंधां नूं सुन कर देवे। सानू कोशिश करनी चाहिए है कि जे साडे कोल एक्सेस हैगा है किसी चीज़ का, खास करके जे दौलत का, तो असीं उन्होंने लोड़वंदा देिए जिन्हें दे एक्चुअल च काम आ सके। सो थोड़े गल्बात करके बहुत मज़ा आया है, सफ़र बहुत ही सोहना बीतिया। तो हूँ जोड़ा समा है मैं बाली इजाजत नहीं दे रहा, तो नहीं ना ही इजाजत दे रहे हैं साढ़े अगले RG जो कि स्टूडियो के आ गए ने, तो अपनी बहुत सारी किस्से कहानियां लेके आओ, उन्हों का स्वागत करते हैं। तो मैं दौ तुम इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।

समय हो गया जी शाम 10:07 हो रही है। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दरमियान फ्रांस के नीस विच वफद पदरी गलबात जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में सेहत संभाल को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम चुके गए हैं।

बिल्कुल जी, जिंदगी जिहड़ी हैगी वो छइयां छइयां करके चलते रहें। जो कोई बॉलीवुड जो हैगा साड़ी जिंदगी का बड़ा ही खास हिस्सा हैगा, तो इसी खास हिस्से दे विचों कुछ एक इदां दे किरदार भी रहे हैगे जिन्होंने बॉलीवुड दे विच अपनी बहुत ज़्यादा जिहड़ी पेशनगी है वो दित्ती हैगी है। तो अज उन्हां ही किरदारां दे जन्मदिन या पुन्या तिथियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां विचों एक हैगा जी भरत भूषण जी, जिहड़े कि 14 जून 1920 नूं पैदा होए ते 27 जनवरी 1992 नूं सानूं छड्ड के चले गए। बेसिकली वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार जिहड़े सीगे ते हिंदी मूवीज़ दे विच ना सिर्फ उन्होंने अदाकारी की बल्कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर ते एज अ प्रोड्यूसर दे तौर ते भी उन्होंने अपना काफ़ी नाम कमाया सीगा। मेरठ दे विच पैदा होए ते अलीगढ़ उत्तर प्रदेश दे विच ओ बॉर्न एंड ब्रॉट अप होए। ते दस दिए कि 1941 तो 1942 दे विच उन्हां दा जिहड़ा अर्ली करियर सीगा ओ उन्हां नूं बॉलीवुड दे विच काफ़ी ज़्यादा स्टारडम दे वल लै गया। उन्हां दी जिहड़ी स्टार्टिंग ऑफ करियर सी 1941 दे विच एक स्मॉल रोल केदार शर्मा दी सुपरहिट फिल्म चित्रलेखा तो शुरू होया सीगा, हालांकि जिहड़ा स्टार्ट ऑफ करियर सी ओ एड्डा ज़्यादा खास नहीं सीगा। ते उन्हां दी एक होर मूवी सुहागरात 1948 दे विच आई जिहड़ी कि इन्नी ज़्यादा वधिया परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन उस तो बाद आई जी विजय भट्ट दी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म बहचू पावरा। ते इस फिल्म ने बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स की एक अलग ही जिहड़ी सिलसिला सीगा उसनों शुरू किया। तो इन्होंने ही भरत भूषण नूं भी एक बहुत बेहतरीन स्टार जिहड़ा सीगा वह बना दिता। दस दिए कि भरत भूषण जिहड़े सीगे वह भरत राय राय बहादुर मोतीला गुप्ता दे घर जिहड़े सीगे वह पैदा होए सीगे। तो इन्हां दी जिहड़ी बेसिकली फैमिली सी वह मेरठ उत्तर प्रदेश के विच ही सीगी। तो इन्हां दे जिहड़े फादर सीगे वह गवर्नमेंट लीडर ऑफ मेरठ सीगे ते सुप्रीम कोर्ट दे विच एज अ जज इलाहाबाद वह रिटायर होए। उस तो बाद इन्हां दे एक वड्डे ब्रदर भी सीगे ते इन्हां दे जिहड़े मदर सीगे वह काफ़ी ज़्यादा जदों छोटे होंदे सी 2 साल दे उसी उम्र दे विच पूरे हो गए सीगे। ते इन्हां ने जिहड़ा ब्याह सीगा वह मेरठ की एक बड़ी ही प्रोमीनेंट जमींदार फैमिली दे विच कराया सीगा, जिन्हां दी उन्हां दी धर्मपत्नी का नाम सीगा सरला। ते इन्हां उन्हां दी दो बेटी सी अनुराधा ते अपराजिता। ते उन्होंने अपने करियर दे विच काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ कीतियां सीगा, स्पेसीफिकली टिल 1993 तक जिहड़ी उन्हां दी आखिरी मूवी सी वह सी आखिरी चेतावनी, ते जिहड़ी कि रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन इस करके हमशकल जिहड़ी सीगी वह उन्हां दी आखिरी मूवी बन गई सीगी। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जिहड़े सीगे वह जीते। 1955 ते 1956 दे विच फिल्म फेयर अवार्ड्स एज अ बेस्ट एक्टर के तौर पर नॉमीनेट भी होया। मिर्जा गालिब वास्ते वह नॉमीनेट होए से जित नहीं पाए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वास्ते उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जिहड़ा सीगा वह जितया सीगा। इस तों अलावा एक होर शख्सियत जिहड़े सीगे सुरेंद्र कौर जी, जिहड़े कि 25 नवंबर 1929 नूं पैदा होए सीगे, वह अज के दिन 14 जून 2006 नूं सानूं अलविदा कह के चल गए सीगे। वह सीगे जी बहुत ही बेहतरीन गायक ते सोंग राइटर जिहड़े सीगे। ते बेसिकली उन्होंने पंजाबी फोक सोंग्स जिहड़े सी ज़्यादा लिखे सीगे, लेकिन इस तों अलावा उन्होंने हिंदी फिल्म वास्ते भी 1948 1952 दे विच प्लेबैक सिंगिंग जिहड़ी सी ओह कीती सी। ते पंजाबी म्यूजिक दे विच उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन वास्ते उन्होंने नाइटिंगेल ऑफ पंजाब जिहड़ा हैगा बाय संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड 1984 दे विच ते पद्मश्री 2006 दे विच भी दिता गया सीगा। सो अज के दिन सानू अलविदा कह के जरूर चले गए सी, लेकिन कहिंदे ना कि कुछ कलाकार जिहड़े हैगे ओह अपने आप दे विच खास रहिंदे ही रहिंदे। इस अलावा

सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे उस व्हाट्सएप सुनेहे नूं फर्जी करार दिता जिस विच राष्ट्रीय विद्यार्थी लैपटॉप योजना तहत मुफ्त लैपटॉपां लई अर्जियां स्वीकार किए जाने का दावा किया गया। अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने सरहद पारों नशीले पदार्थों की तस्करी के दो वख-वख मसलों में दो मुलजमान को 5 किलो तो वध हेरोइन समेत किया गिरफ्तार। अते औरतों के आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप से भारत का पहला मैच बर्मिंगम च पाकिस्तान नाल हो रहा है। भारत टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी कर रहा है, भारत ने 170 रन बनाए। ऐसे ही उन तक दिया अपन न्यूज हेडलाइंस, तुसी जुड़े रहो साढ़े नाल।

अगली फरमाइश आई जी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा इतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप तो नाल कालका तो आदेश शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज ते बेटा।

बजाज इन्होंने एक फरमाइश की है जी, ए जाते हुए लम्हों जरा, ए जाते हुए लम्हे जरा ठहरो गीत दी। लो जी ये फरमाइश लेके मैं छोड़ रहा हूँ, तो अपनी फरमाइश मैंने 9855101027 रात 10 बजे तक शेयर कर सकते हो, किसी भी पुरानी हिंदी फिल्मी गीत या किसी पुरानी पंजाबी फिल्मी गीत दी फरमाइशा जरिया है वो लेके आ सकते हो। तो विनोद राठौड़ रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ बॉर्डर पर ट्रैक एंजॉय करो।

अभी फरमाइश शरी आई है जी गौना थाना पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता इन्होंने फरमाइश की जी मूवी कुर्बानी दे गीत क्या देखते हो सूरत तुम्हारी लो जी फरमाइश लेके मैं जुड़ रहा हूँ तो अपनी फरमाइश रात 10 बजे तक 9 8 5 5 1 0 1 0 2 7 शेयर कर दे रहा हूँ।

फरमाशा दे किसे नो गिला के चलते अगली फरमाश चढ़ी आई है ओ आई है जी दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो फरमाश करने वाले ने हीरा मनी वर्मा परस मनी वर्मा पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नाल है गया जी नोखे लाल वर्मा इन्होंने फरमाश की फिल्म इज्जत दे ये दिल तुम बिन कहीं लगता ही नहीं हम क्या करें। इस नाल ही मैं कुछ एक फरमाइश नाम जो है इस फरमाइश के नाल जोड़ना चाहूँगा वो है जी महाराज कीर्तनपुरी स्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी इन्होंने किया है जी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ तो इस तो अलावा साढ़े को नाम आया जी सुनील पाठक कमल पाठक दीपक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सोचा सिंह पाठक विनोदपुरी अनारकली बाजार जगराओं तो इस तो अलावा साढ़े को नाम आया जी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आजाद नगर लक्स हरिद्वार तो इस तो अलावा श्री सुधाकर राजा जाधव डॉक्टर प्रशांत राजा जाधव संचित व्याल प्रथमेश देशमुख सर्वत देशमुख प्रणाली देशमुख सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख आया जी साढ़े को मैसेज काले गांव जफाराबाद तो एक और नाम जरा मैं जोड़ना चाहूंगा वो आएगा जी राजकुमार डोडी प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी गांव फरासे जिला हिसार तो इन्होंने मिली जुली फरमाइश के अगला ट्रैक जरा लैके मैं जुड़ रहा थोड़े ना

फरमाइश के सैन अकेले के चलते आज की आखिरी फरमाइश लेके मैं जुड़ रहे हैं आइया जी के निर्मला पटियाला तो मुकेश पता नीलम पता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश पता इन्होंने फरमाइश की थी दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके इस तरह दिल चाहता ना मैं समेटन दी चाह सचाऊंगा मिलते हैं जे दिल चाहता दोस्त पर शामिल गजल तक तो एंजॉय करो आज की आखिरी फरमाइश।

मुस्कान से शुरू तेरी यादों पर ख़त्म, मेरा हर दिन एक खूबसूरत कहानी सा लगता है। शामी गज़ल के इस महफिल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सचिन, और आज इस महफिल में कुछ एक गज़लें कुछ एक कहानियाँ लेके मैं जुड़ गया हूँ फिर से। आरव और मीना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन आरव के दिल में दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। मैं मीना से बहुत प्यार करता था मगर कभी कह ही नहीं पाया। सुन के ऐसा लगता है ना, शायद हम में से ही किसी की कॉलेज की कहानी है। कॉलेज का आखिरी दिन

देखी और तय किया कि आज वो नैना को दे देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन नैना को अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा। जल्दबाजी में वह सबसे विदा लेकर चली गई और आराम की चिट्ठी उसके बैग तक पहुंच ही नहीं पाई। उस रात बारिश हो रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस चिट्ठी को देख रहा था। कुछ अल्पास दिल में ही रह जाते हैं, कुछ ख्वाब आंखों में ही बह जाते हैं। हर कहानी मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी याद रह जाते हैं। समय बीतता गया, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन आरव उसने वो चिट्ठी यूं की त्यों संभाल के रखी। 5 साल बाद एक दिन मैं किताबों की दुकान पर गया। वहां उसकी नजर एक बार फिर नैना पर पड़ी। कुछ समझ तो नहीं पाया, आंखें बस नैना को देखती रही। और इतने में नैना ने भी आरव को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। बातों बातों में नैना बोली, तुम जानते हो कॉलेज के बाद मुझे हमेशा लगता था कि तुम कुछ कहना चाहते थे। आरव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। और फिर उसने बैग से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। नैना हैरान रह गई। वक्त बदल गया, मौसम बदल गए, मगर कुछ एहसास नहीं बदले। जो बात परसों पहले कहानी थी वो आज भी मेरे दिल से नहीं निकले। नैना ने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें नम हो गई। मैं बोली, काश ये चिट्ठी मुझे 5 साल पहले मिल जाती। आरव मुस्कुराया और कहा, शायद तब हमारी कहानी इतनी खूबसूरत नहीं बनती। मोहब्बत को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं, हर सफर का कोई साहिल मिले ये भी जरूरी नहीं। कुछ लोग उम्र भर दिल में बस जाते हैं, उनसे रोज मुलाकात हो ये भी तो जरूरी नहीं। श्यामी गजल की इस महफिल में कुछ कहानियां, कुछ गजलें।

कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती है और कुछ यादें वक्त भी नहीं मिटा पाता। रोहन रोज शाम को शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर बैठा करता था। वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन उसे किसी की याद दिलाती थी। वो याद थी अनुष्का की। सालों पहले इसी स्टेशन पर दोनों पहली बार मिले थे। एक छोटी सी मुलाकात जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों घंटों स्टेशन की बेंच पर बैठकर बातें करते थे। ट्रेन आती जाती रहती थी लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ रिश्ते यूं ही खास हो जाते हैं, बिना वजह दिल के पास हो जाते हैं। जो लोग मिलते हैं तकदीर में कहीं वो जिंदगी का एहसास हो जाते हैं।

परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। बिता लेते समय उसने कहा, अगर प्यार सच्चा हुआ तो एक दिन हम फिर यहीं मिलेंगे। रोहन ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन दिल में एक डर था कि शायद ये आखिरी मुलाकात है। दिन महीने बने, महीने साल बन गए, मगर रोहन जब भी उदास होता उस स्टेशन पर चला जाता। तेरी यादों का मौसम आज भी आता है, हर गुजरा लम्हा मुझे तेरा पता बताता है। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, पर दिल कहाँ किसी की बात मान पाता है। एक शाम बारिश हो रही थी, रोहन उसे पुराने बेंच पर बैठा था। अचानक किसी ने पीछे से कहा, आज भी यहीं बैठे हो? यह आवाज सुनकर जैसे वक्त थम गया। पीछे मुड़कर देखा तो अनुष्का खड़ी थी, वही मुस्कान, वही आंखें, वही अपनापन। रोहन की आंखों में खुशी झलक गई। अनुष्का बोली, मैंने कहा था ना, अगर प्यार सच्चा होगा तो फिर मिलेंगे। कुछ वादे वक्त से बड़े होते हैं, कुछ रिश्ते दूरी से बड़े होते हैं। जो दिल से जुड़े हो एक बार, वो कभी जुदा नहीं होते। दोनों लंबे समय तक चुप रहे, क्योंकि कभी कभी खामोशियां भी वो सब कह देती हैं जो शब्द शायद कह ही नहीं पाते। जाते जाते रोहन ने पूछा, इतने सालों बाद भी लौट आई? अनुष्का मुस्कुराई और बोली, कुछ लोग घर जैसे होते हैं, चाहे कितने भी दूर चले जाओ उन्हीं के पास आना पड़ता है। मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, हर किसी का अपना आसमान नहीं होता। जो लोग दिल में बस जाते हैं एक बार, उन्हें उम्र भर भुलाना आसान नहीं होता। शामी गजल के इस महफिल में अगली गजल आपके दोस्त सचिन के साथ।

सबनों कहना कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, की पता ए वक्त कल हो ना हो, ते कदी किसी वास्ते कुछ वधिया करन दा मौका मिले, चार कदम अगे वध के करो, ते कदी किसी दा कुछ पूरा करन दा या किसी तो बदला लैण दा मौका आए, अठ कदम पिछे हट जाओ, हंसते रहो, फसते रहो, ते अपने दोस्त आकाशवाणी दे नाल जुड़े रहो।